भी महसूस किया है कि हर बात पर सफाई देना, हर बहस को जीतना और हर आरोप का जवाब देना असल में आपको अंदर से खाली कर देता है। आज इस ऑडियो जर्नी में हम उस गहराई में उतरेंगे जहां शांति ही आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम चुप रहे तो लोग हमें दबा देंगे, लेकिन सच तो यह है कि जो इंसान खुद को शांत रखना जानता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकती। इस स्क्रिप्ट के जरिए हम समझेंगे कि कैसे आपका नॉन रिएक्शन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। हमारी लाइफ में अक्सर ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमारा ईगो हमसे कहता है कि अभी जवाब दो, दिखा दो उसे कि तुम क्या हो, लेकिन वहीं पर आपकी समझदारी आपसे कहती है कि अपनी कीमती एनर्जी इस बेकार की बहस में मत लगाओ। क्या आपको लगता है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी है? क्या आपको लगता है कि लोगों की गलत फहमियों को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी इनर पीस की कीमत किसी भी बहस से कहीं ज्यादा है, तब आप एक नए इंसान बन जाते हैं। इस पहले अध्याय में हम बात करेंगे उस जादू की जो तब होता है जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। सोचिए, कोई आपको उकसा रहा है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और आप बस उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। उस पल में वह इंसान हार जाता है और आप जीत जाते हैं, क्योंकि आपने उसे अपनी शांति छीनने की इजाजत नहीं दी। रिएक्शन एक ऐसी आदत बन चुकी है जिसे हम चाहकर भी नहीं रोक पाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत हमारे माइंड को कितना थका देती है? इस ऑडियो बुक में हम उन बारीकियों को समझेंगे जो आपको एक रिएक्टिव इंसान से एक शांत योद्धा में बदल देंगी। अगर आप तैयार हैं अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने के लिए, अगर आप तैयार हैं खुद को उस लेवल पर ले जाने के लिए जहां किसी की भी कड़वी बात आपको छू तक ना पाए, तो चलिए शुरू करते हैं यह बदलाव की कहानी। नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि क्या आपने कभी चुप रहकर किसी सिचुएशन को संभाला है, या फिर आप आज से इस सफर की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपको यह सोच पावरफुल लग रही है तो हमारे चैनल बुक चैंपियन को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि आपकी लाइफ को बदलने के लिए गहरी और असरदार ऑडियो जर्नी

लेकर आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं उस पहले और सबसे महत्वपूर्ण नियम की तरफ, जो इस पूरी दुनिया के शोर के बीच आपको आपका सेंटर ढूंढने में मदद करेगा। याद रखिए, असली राजा वह नहीं होता जिसके पास बहुत सारे शब्द हों, बल्कि वह होता है जिसके पास खुद पर पूरा कंट्रोल हो। तैयार हो जाइए उस मौन की ताकत को सुनने के लिए जो बड़े बड़े तूफानों को भी थामने की हिम्मत रखती है। अध्याय एक, मौन की अद्भुत शक्ति। कभी कभी हमें लगता है कि चुप रहना हार मान लेना है। हमें लगता है कि अगर हम चुप रहे तो सामने वाला सोचेगा कि हम डर गए, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। चुप रहना असल में वह फिल्टर है जो आपकी लाइफ से फालतू की चीजों को बाहर निकाल देता है। जब आप चुप होते हैं तो आप सिर्फ चुप नहीं होते, आप सुन रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी शक्ति को बचा रहे होते हैं। जो लोग हर बात पर अपनी राय देते हैं, जो हर छोटी बात पर बहस करते हैं, उनकी बातों की वैल्यू वक्त के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन जो इंसान सिर्फ तब बोलता है जब बोलना जरूरी हो, उसकी एक एक बात पत्थर की लकीर बन जाती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती है? चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वह अपनी मुस्कुराहट नहीं खोता। ऐसे लोग अपनी ताकत को बाहर नहीं बल्कि अंदर खोजते हैं। वे जानते हैं कि शब्दों से ज्यादा असर उनके व्यक्तित्व में है। सोचिए, जब आप किसी बहस के बीच में खुद को बाहर खींच लेते हैं तो आप सिर्फ उस बहस को खत्म नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को बचा रहे होते हैं। जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप सामने वाले के लेवल पर गिर जाते हैं। अगर कोई आप पर चिल्ला रहा है और आप भी उस पर चिल्लाने लगे, तो आप में और उसमें क्या फर्क रह गया? साइलेंस आपको वह डिग्निटी देता है जो चिल्लाने से कभी नहीं मिल सकती। यह वह स्पेस है जहां आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है और जहां आप दूसरों के माइंड को पढ़ना सीखते हैं। जब आप शांत होते हैं तो दुनिया आपको ज्यादा ध्यान से सुनने लगती है। लोग आपकी चुप्पी से डरने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यह अनिश्चितता ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। हम इस ऑडियो बुक में आगे यह भी जानेंगे कि कैसे यह चुप्पी आपके रिश्तों को सुधार सकती है और कैसे यह आपके करियर में आपको एक लीडर बना सकती है। क्योंकि एक लीडर वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह होता है जो सबसे ज्यादा सुनता है और सबसे सही वक्त पर बोलता है। मौन की यह गहराई हमें उस मुकाम पर ले आती है जहां हमें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अक्सर हमारा ईगो हमें उकसाता है कि जाओ और उसे अपनी असलियत दिखाओ, उसे बताओ कि तुम कितने काबिल हो। लेकिन असल में काबिलियत दिखाने की चीज नहीं, जीने की चीज है। जब आप अपनी एनर्जी को केवल खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं तो आपका रिजल्ट ही आपकी तरफ से बोलता है। यहां से शुरू होता है अध्याय दो, ट्रिगर्स को मास्टर करना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गुस्से का स्विच किसके पास है? क्या कोई भी राह चलता इंसान आपके दिन का सुकून छीन सकता है? ट्रिगर वह बटन है जिसे दबाते ही हम अपना आपा खो देते हैं। किसी ने आपके काम की आलोचना की और आप ट्रिगर हो गए। किसी ने आपकी पुरानी गलती याद दिलाई और आप ट्रिगर हो गए। लेकिन इस अध्याय में बुक चैंपियन आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने रिमोट कंट्रोल को दूसरों के हाथों से छीन कर वापस अपने पास रख सकते हैं। ट्रिगर होना हमारी एक पुरानी प्रोग्रामिंग है जिसे हमें अब डिलीट करना होगा। हमें समझना होगा कि जब कोई हमें कुछ कहता है तो वह उसकी अपनी मानसिकता का प्रतिबिंब होता है, हमारी सच्चाई का नहीं। जरा सोचिए, एक व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर आसमान को गाली दे रहा है तो क्या आसमान को बुरा लगेगा? नहीं, क्योंकि आसमान को अपनी विशालता का पता है। इसी तरह जब आप अपनी आंतरिक शक्ति और अपनी वर्थ को जान लेते हैं तो दुनिया का कोई भी अपमान आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता। मास्टरी का मतलब यह नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा। मास्टरी का मतलब यह है कि गुस्से के आने और आपके बोलने के बीच में जो पॉज होता है, आप उस पर अपना कब्जा जमा लें। उस एक सेकंड के ठहराव में ही आपकी पूरी जीत छिपी है। जब आप उस पल में खुद से सवाल करते हैं कि क्या यह इंसान मेरे रिएक्शन के लायक है, तो आपका जवाब अक्सर नहीं में ही आता है। यह वह अवेयरनेस है जो आपको एक आम इंसान से एक महान व्यक्तित्व की ओर ले जाती है।
ट्रिगर्स असल

हमारे घाव होते हैं जिन्हें दुनिया कुरेदती है। अगर आप अपने उन घावों को भर लें, अपनी कमियों को स्वीकार कर लें, तो कोई भी आपको अपनी बातों से घायल नहीं कर पाएगा। यह सफर है खुद को इमोशनली बुलेट प्रूफ बनाने का, जहां आप नकारात्मकता को देखते तो हैं पर उसे महसूस नहीं करते। अक्सर हम लोगों के व्यवहार को बहुत पर्सनल ले लेते हैं। हमें लगता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि जो इंसान कड़वा बोल रहा है वह अंदर से खुद कितना दुखी होगा? जब आप घृणा के बजाय सहानुभूति से देखना शुरू करते हैं तो आपका रिएक्शन अपने आप खत्म हो जाता है। आप सोचने लगते हैं कि इस बेचारे इंसान को शायद शांति की जरूरत है। यही वह पॉइंट है जहां आप दुनिया के साथ एक गेम खेलना शुरू करते हैं, जहां लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं और आप अपनी शांति से उन्हें हैरान कर देते हैं। इस ऑडियो जर्नी में हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जो आपको हर मुश्किल घड़ी में स्थिर रखेगी। इसे हम कहते हैं द विटनेस मोड, यानी अपनी जिंदगी के ड्रामे में खुद एक एक्टर होने के साथ साथ एक दर्शक भी बन जाना। जब आप खुद को एक दर्शक की तरह देखते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे आपका माइंड रिएक्ट करने के लिए तड़प रहा है और आप बस मुस्कुराकर उसे शांत कर देते हैं। ये कंट्रोल ही असली आजादी है। अब हम बात करेंगे उन छोटी छोटी बातों की जो दिन भर में हमें परेशान करती हैं। ट्रैफिक में किसी का हॉर्न बजाना, सोशल मीडिया पर किसी का नकारात्मक कमेंट या घर में किसी की अनचाही सलाह। ये सब छोटे छोटे टेस्ट हैं जो आपकी मैच्योरिटी को चेक करते हैं। अगर आप इन छोटी बातों पर अपनी एनर्जी लुटाते रहेंगे तो बड़े लक्ष्यों के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। बुक चैंपियन पर हम आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसे कचरे के डिब्बे में मत डालिए। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं, वही एनर्जी जो बाद में आपके सपनों को पूरा करने, आपकी सेहत सुधारने और आपके दिमाग को शांत रखने में काम आती है। क्या आपको नहीं लगता कि अपनी शांति को किसी और के हाथ में देना एक बहुत बड़ी हार है? आज इस पल से यह तय करें कि आप किसी के भी हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। लोग आपको उकसाएंगे, लोग आपको परखेंगे, लेकिन आपकी चुप्पी उन्हें वह जवाब देगी जो शब्द कभी नहीं दे सकते। यहां एक और गहरी बात समझने वाली है कि रिएक्शन सिर्फ शब्दों में नहीं होता, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी सोच में भी होता है। कभी कभी हम जुबान से तो चुप रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उस इंसान को कोस रहे होते हैं। यह भी एक तरह का रिएक्शन ही है जो आपके सिस्टम को जहरीला बना रहा है। असली नॉन रिएक्शन वह है जहां आपका माइंड भी शांत हो जाए, जहां आप सच में यह मान लें कि सामने वाले की बात का आपकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। जब आप इस लेवल की डिटैचमेंट पा लेते हैं तो आपकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। आप भीड़ में खड़े होकर भी सबसे अलग दिखते हैं क्योंकि आपकी स्थिरता लोगों को आकर्षित करती है। अगले अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे इस डिटैचमेंट को अपनी आदत बनाया जाए और कैसे उन रिश्तों को संभाला जाए जो आपको बार बार ट्रिगर करते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया को बदलना हमारे हाथ में नहीं है लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया के हम अकेले बादशाह हैं। तैयार हो जाइए इस बादशाही को महसूस करने के लिए, जहां आपकी इजाजत के बिना आपकी शांति का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब हम इमोशनल डिटैचमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब पत्थर दिल होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने दिल को फालतू के बोझ से बचाना। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और आपके बैग में बहुत सारे भारी पत्थर भरे हुए हैं। ये पत्थर दूसरों की बातें हैं, उनकी राय है और उनके प्रति आपका गुस्सा है। अगर आप इन पत्थरों को साथ लेकर चलेंगे तो आप कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। डिटैचमेंट का मतलब है उन पत्थरों को एक एक करके रास्ते में ही गिरा देना। जैसे जैसे आपका बैग हल्का होगा आपकी चढ़ाई आसान होती जाएगी। यह ऑडियो बुक आपको वह ताकत देगी कि आप उन सभी यादों और बातों को छोड़ सकें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या चुप रहना कमजोरी की निशानी नहीं है, क्या लोग हमारा फायदा नहीं उठाएंगे? इसका जवाब बहुत सीधा है। जब आप शांति से और ग्रेस के साथ चुप रहते हैं तो आप कमजोर नहीं बल्कि खतरनाक रूप से शक्तिशाली लगते हैं। आपकी खामोशी सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर

से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, और यही वह रहस्य है जो आपको एक विजेता बनाता है। जब हम डिटैचमेंट शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि इसका मतलब है सब कुछ छोड़ देकर संन्यास ले लेना, लेकिन असल में इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है दुनिया के बीच में रहकर भी खुद को सुरक्षित रखना। इमेजिन कीजिए कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आपने एक मजबूत रेनकोट पहना हुआ है। बारिश आपको भिगो नहीं सकती क्योंकि आपके पास सुरक्षा का कवच है। ठीक इसी तरह जब लोग आपके बारे में राय बनाते हैं या आपको जज करते हैं तो वह बारिश की तरह है। अगर आपके पास डिटैचमेंट का रेनकोट है तो उनका व्यवहार आपके मन के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा। बुक चैंपियन पर हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि आप हर इंसान की सोच को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी बाउंड्री जरूर तय कर सकते हैं। अक्सर हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें दुख होता है। यह दुख ही हमारा सबसे बड़ा रिएक्शन है। डिटैचमेंट आपको सिखाता है कि आप अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। अक्सर रिश्तों में हम एक दूसरे से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि सामने वाले का एक छोटा सा बदलाव भी हमें परेशान कर देता है। अगर किसी ने हमें इग्नोर किया तो हम पूरा दिन इसी सोच में बिता देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यहां पर आपको अपनी सेल्फ वर्थ को समझने की जरूरत है। क्या आपकी कीमत इतनी कम है कि कोई एक मैसेज ना करे तो आप टूट जाएं? जब आप इमोशनली डिटैच होते हैं तो आप लोगों को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, न कि वैसा जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं। इससे न केवल आपको शांति मिलती है बल्कि आपके रिश्ते भी ज्यादा मैच्योर होते हैं। आप दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ डीएच देते हैं और अपना पूरा फोकस अपनी ग्रोथ पर लगाते हैं। यह वह स्टेज है जहां आप सच में फ्री महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि लोग आएंगे और जाएंगे, बातें होंगी और खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपकी आंतरिक शांति हमेशा आपके साथ रहेगी। यहां एक और गहरी बात है जिसे हमें समझना होगा और वह है पॉजिटिव डिटैचमेंट। इसका मतलब है कि आप कर्म तो पूरे दिल से करते हैं लेकिन उसके रिजल्ट से खुद को बांधते नहीं हैं। अगर आपने किसी की मदद की और उसने आपको थैंक यू नहीं कहा तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने वह मदद अपनी खुशी के लिए की थी, उसके अप्रूवल के लिए नहीं। जब आप इस माइंडसेट से जीते हैं तो दुनिया का कोई भी व्यवहार आपको हर्ट नहीं कर सकता। आप एक गहरे समुद्र की तरह बन जाते हैं जिसकी सतह पर तो लहरें उठती हैं लेकिन गहराई में हमेशा सन्नाटा और शांति बनी रहती है। बुक चैंपियन पर हमारा मकसद आपको यही गहराई देना है। लोग आपको उकसाने के लिए हजार तरीके अपनाएंगे, वे आपकी कमजोरियां ढूंढेंगे, लेकिन अगर आप अंदर से डिटैच हैं तो उन्हें आपके अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आपकी यह खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाएगी। अध्याय 4, ग्रेस के साथ रिस्पॉन्ड करना। अब सवाल आता है कि क्या हमें कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए? क्या हर स्थिति में चुप रहना ही सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट रिएक्टिंग का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी आवाज दबा लें। इसका मतलब है कि आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखें। रिएक्शन वह होता है जो बिना सोचे समझे गुस्से में निकलता है, जबकि रिस्पॉन्स वह होता है जो सोच समझ कर और ग्रेस के साथ दिया जाता है। सोचिए, किसी ने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। रिएक्शन होगा कि आप भी उसे गाली दें, लेकिन रिस्पॉन्स यह होगा कि आप शांति से कहें कि मुझे इस लहजे में बात करना पसंद नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। जब आप ग्रेस के साथ जवाब देते हैं तो आप सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, न कि सिचुएशन आपको कंट्रोल करती है। इससे सामने वाले को अपनी गलती का ज्यादा एहसास होता है क्योंकि आपने उसे वह ड्रामा नहीं दिया जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। ग्रेसफुल रिस्पॉन्स के लिए आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना। जब आपको गुस्सा आए तो उसे एक सिग्नल की तरह देखें। यह सिग्नल आपको बता रहा है कि यहां कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप तुरंत ब्लास्ट हो जाएं। आप उस गुस्से को महसूस करें, उसे ऑब्जर्व करें और फिर तय करें कि सबसे समझदारी भरा कदम क्या होगा। कभी कभी सबसे अच्छा रिस्पॉन्स एक सिंपल ओके या एक छोटी सी मुस्कुराहट होती है। यह दिखाता है कि आप इतने पावरफुल हैं कि आपने सामने वाले की नेगेटिविटी

किसी को अपने अंदर जगह ही नहीं दी। बुक चैंपियन पर हम इसी पावर की बात कर रहे हैं। जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हैं तो लोग आपके प्रति अपना रवैया बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आपको आसानी से ट्रिगर नहीं किया जा सकता। रिस्पॉन्ड करने का एक और तरीका है इग्नोरेंस। कुछ लोग और कुछ बातें आपके रिस्पॉन्स के लायक भी नहीं होती। हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, वरना आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी डिग्निटी को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप बेवजह की बहसों से खुद को बाहर रखते हैं तो आप अपनी मेंटल क्लैरिटी को बचाते हैं। यह मेंटल क्लैरिटी ही आपको लाइफ के बड़े डिसीजन लेने में मदद करती है। याद रखें, जो इंसान अपने शब्दों को बचाकर रखता है, जब वह बोलता है तो पूरी दुनिया उसे सुनती है। आपकी शांति कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट है कि आप अपनी लाइफ के बॉस हैं और आपकी शांति किसी के भी ओपिनियन की मोहताज नहीं है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया जाए और कैसे अपनी इनर स्ट्रेंथ को इतना मजबूत किया जाए कि बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला ना सके। दोस्तों, अब तक आपने यह समझ लिया है कि चुप रहना और रिएक्ट न करना कितनी बड़ी सुपर पावर है। लेकिन असली चैलेंज तब शुरू होता है जब आप इस डिजिटल और शोर भरी दुनिया में कदम रखते हैं। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। बुक चैंपियन पर हम चाहते हैं कि आप सिर्फ इस ऑडियो बुक को सुने नहीं, बल्कि इसे अपनी रगों में उतार लें। अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। दिन में कम से कम 10 मिनट खुद के साथ बिताएं और अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखें। जब आप अपने अंदर की हलचल को पहचानना शुरू कर देते हैं तो बाहर की हलचल आपको परेशान करना बंद कर देती है। अपनी मेंटल बाउंड्रीज को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की भी नेगेटिविटी आपके परमिशन के बिना अंदर न आ सके। याद रखिए, आपकी एनर्जी आपका सबसे कीमती धन है और इसे कहां खर्च करना है यह सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन होना चाहिए। कभी कभी लोग आपको उकसाने के लिए आपके पास्ट का सहारा लेंगे, आपकी कमजोरियों पर चोट करेंगे। ऐसे समय में आपकी इनर स्ट्रेंथ ही आपकी ढाल बनेगी। खुद को बार बार यह याद दिलाएं कि आप वह नहीं हैं जो लोग आपके बारे में कहते हैं, आप वह हैं जो आप मुश्किल समय में चुनते हैं। जब आप अपनी शांति को अपनी पहचान बना लेते हैं तो दुनिया की हर चुनौती आपके सामने छोटी लगने लगती है। एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जिसे आप रोज कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि कोई स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है तो अपने हाथ अपनी चेस्ट पर रखें और कहें कि मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है। यह छोटा सा वाक्य आपके दिमाग को रीसेट कर देता है और आपको रिएक्ट करने से रोकता है। लाइफ में क्लैरिटी तभी आती है जब शोर कम होता है, और यह शोर आपके माइंड के अंदर का है जिसे आपको शांत करना सीखना होगा। अध्याय 6, एक शांत विजेता की पहचान। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग इतने शांत क्यों होते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि गुस्सा और रिएक्शन उनके विजन को धुंधला कर देते हैं। एक शांत इंसान सबसे ज्यादा आकर्षक होता है क्योंकि उसके पास खुद का कंट्रोल होता है। जब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो आप लोगों को परखना शुरू कर देते हैं। आपको उनके शब्दों के पीछे का डर और उनकी इनसिक्योरिटी साफ दिखने लगती है। फिर आपको उन पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आता है। यही वह पॉइंट है जहां आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं। बुक चैंपियन का यह मिशन है कि आप उस लेवल तक पहुंचें जहां आपकी मौजूदगी ही लोगों को शांत कर दें। आपकी चुप्पी में वह वजन होना चाहिए कि सामने वाला खुद अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हो जाए। रिश्तों में भी जब आप रिएक्ट नहीं करते तो आप ड्रामा को खत्म कर देते हैं। लड़ाई हमेशा दो तरफ से होती है। अगर एक पक्ष शांत हो जाए तो आग अपने आप बुझ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत सह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उस गंदगी में हाथ नहीं डालना चाहते। अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए पीछे हट जाना दुनिया का सबसे बहादुर कदम है। जो लोग आपको कमजोर समझते हैं वे आपकी लाइफ के बड़े बदलावों को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी आपने दूसरों को जवाब देने में बचाई थी वही अब आपकी सफलता बनकर बोलेगी। सफलता की गूंज शब्दों

के शोर से कहीं ज्यादा तेज होती है। इसलिए अपने लक्ष्यों पर फोकस करें और अपनी चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी बनाएं। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ से फालतू के लोग और फालतू की बातें अपने आप कम होने लगी हैं। क्योंकि जब आप रिएक्ट नहीं करते तो टॉक्सिक लोगों को आपसे वह फीडबैक नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए होता है। वे धीरे धीरे आपकी लाइफ से दूर चले जाते हैं। आपकी लाइफ में सिर्फ वही लोग बचेंगे जो आपकी शांति की कदर करते हैं। यह एक नेचुरल फिल्टर है जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। बुक चैंपियन पर हम हमेशा कहते हैं कि आपकी ग्रोथ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है, और एक शांत माइंडसेट ही सबसे पावरफुल माइंडसेट है। अपनी इस यात्रा पर गर्व करें, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इमोशंस के मालिक बन पाते हैं। आप उन 8% लोगों में शामिल हो रहे हैं जो दुनिया के बहाव में बहते नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अंत में याद रखिए कि यह प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया टेस्ट होगा, हर इंसान एक नया चैलेंज लेकर आएगा, लेकिन हर बार जब आप मुस्कुराकर चुप रह जाएंगे, आप अपनी जीत की एक नई ईंट रखेंगे। आपकी इनर पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है जिसे आपको हर पल जीना है। आज इस ऑडियो जर्नी को खत्म करते हुए अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप अपनी शांति का सौदा किसी भी छोटी बात के लिए नहीं करेंगे। आप एक योद्धा हैं, और एक योद्धा कभी भी छोटी लड़ाइयों में अपनी ताकत जाया नहीं करता। अपनी आंखों में वह क्लैरिटी और दिल में वह सुकून रखिए जो सिर्फ एक मास्टर के पास होता है। बुक चैंपियन आपके साथ है आपकी इस बदलाव की कहानी में। तैयार रहिए अपनी लाइफ के अगले और सबसे शानदार वर्जन के लिए, जहां आप सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि शांति की एक मिसाल होंगे। दोस्तों, इस पूरी ऑडियो जर्नी का सार बस इतना ही है कि आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी मैच्योरिटी है। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां आपको किसी को नीचा दिखाने या खुद को सही साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, तब आप सही मायनों में आजाद हो जाते हैं। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, बल्कि यह आपकी लाइफ को रिसेट करने का एक मौका था। अब जब भी आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां आपको गुस्सा आए या कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तो याद रखिएगा कि आपका रिएक्शन आपकी एनर्जी का दान है। और क्या आप अपनी कीमती एनर्जी किसी ऐसे इंसान को दान करना चाहते हैं जो आपकी इज्जत तक नहीं करता? जवाब हमेशा नहीं ही होगा। अपनी इस नई पावर को संभाल कर रखिए और इसे हर उस जगह इस्तेमाल कीजिए जहां लोग आपसे शोर की उम्मीद कर रहे हों। आपकी शांति ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। जैसे जैसे आप इस शांत और पावरफुल माइंडसेट को अपनाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में खुशियां और क्लैरिटी दोनों बढ़ने लगी हैं। तब आप सही मायनों में आजाद हो जाते हैं। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग सिर्फ एक किताब की समरी नहीं थी, बल्कि यह आपकी लाइफ को रिसेट करने का एक मौका था। अब जब भी आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां आपको गुस्सा आए या कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तो याद रखिएगा कि आपका रिएक्शन आपकी एनर्जी का दान है। और क्या आप अपनी कीमती एनर्जी किसी ऐसे इंसान को दान करना चाहते हैं जो आपकी इज्जत तक नहीं करता? जवाब हमेशा नहीं ही होगा। अपनी इस नई पावर को संभाल कर रखिए और इसे हर उस जगह इस्तेमाल कीजिए जहां लोग आपसे शोर की उम्मीद कर रहे हों। आपकी शांति ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। जैसे जैसे आप इस शांत और पावरफुल माइंडसेट को अपनाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में खुशियां और क्लैरिटी दोनों बढ़ने लगी हैं। आपके डिसीजन बेहतर होने लगेंगे और आपके रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और सच्चे हो जाएंगे। बुक चैंपियन पर हमारा मकसद हमेशा यही रहता है कि हम आप तक ऐसी नॉलेज लेकर आए जो आपको सिर्फ मोटिवेट न करे बल्कि आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दे। याद रखिए, दुनिया का सबसे मुश्किल काम खुद पर कंट्रोल पाना है, और अगर आपने यह सीख लिया तो दुनिया की कोई भी जंग जीतना आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा। अपनी इनर स्ट्रेंथ को अपनी पहचान बनाइए और एक ऐसे लीडर बनिए जिसकी चुप्पी में भी हजारों शब्दों जितनी ताकत हो। यह सफर लंबा है, लेकिन इसकी हर एक स्टेप आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। अगर आज की इस ऑडियो जर्नी ने आपके सोचने के तरीके को थोड़ा भी बदला है, या आपको लगा है कि यह बातें आपकी लाइफ

0: में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं, तो अपनी इस लर्निंग को सिर्फ अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को कम से कम अपने एक ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के।
1: बिल्कुल जी, बहुत वधिया मैसेज सीगा जेड़ा, आई होप भी तुसी सुनिया ते समझा होगा, क्योंकि जिन्ने वधिया तरीके ने समझाया कि भी अपने शब्दां ते कंट्रोल रखना। कई बारी कहंदे भी जीभ ते जबान जेड़ी है तुहाडे दोनों कंट्रोल च होनी चाहीदी है, ताकि तुसी चंगे तरीके नाल जिंदगी भी जी सको ते प्लस अपनी हैल्थ जेड़ी वह भी वधिया रख सको। पर दिमागी संतुलन जेड़ा वह बनाना मैनूं लगदा उस तो भी ज़्यादा इंपोर्टेंट है। सो चंगे डिसीजन जेड़े ने वह बजाय कि तुसी रिएक्ट करो किसी गल दे उत्ते, रिस्पोंड करो, ताकि चंगे सोच समझ दे नाल सूझवान होकर तुसी ये काम जेड़े वह कर सको। सो आई होप भी तुसी ये बुक जेड़ी पसंद की होगी। अज का प्रोग्राम जेड़ा अगे वधावांगे, सो तुहानूं दसदा भी मैं तुहाडा होस्ट ते दोस्त राजेश ते अपने बाकी दे प्रोग्राम दे नाल शामिल हाँ जी स्टूडियो तो, ते बाकी दी गल्लां पता जिहड़ियां ने इसे तरीके नाल अगे वधाने एक छोटी कमर्शियल ब्रेक तो बाद।
2: अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
3: कॉल करो 587-360-6890 लाइफ लाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
2: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते, या कॉल करो 587-360-6890।
3: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी।
4: हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।

0: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू वर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.

0: और गायब हो जाओ, तो खुद को कैसे बचाएं? ये हैं खतरे की चार घंटियां। स्कैमर्स हमेशा बातचीत को जल्दी से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने की कोशिश करेंगे, जैसे डेटिंग ऐप से व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर। वो इमोशंस के साथ तेजी से खेलते हैं, कुछ ही दिनों में प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। वो वीडियो कॉल या आमने सामने मिलने से बचेंगे, उनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होगा। और सबसे बड़ी बात, वो आखिर में पैसे या किसी शानदार मौके की बात जरूर छेड़ेंगे। और इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं। पहला, उनकी फोटो को रिवर्स इमेज सर्च से चेक करें। दूसरा, लिंक्स खुद सर्च करें, भेजे गए किसी भी लिंक पर कभी क्लिक ना करें। और अपनी चैट को कॉपी करके किसी AI टूल में पेस्ट करें और उससे पूछें कि क्या ये कोई स्कैम हो सकता है। अगर लगे कि स्कैम हो रहा है तो तुरंत पैसे भेजना बंद कर दें, मैसेजेस सेव कर लें और पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट लें। ध्यान रहे, स्कैम को रिपोर्ट जरूर करें, इससे आप किसी और को भी बचा सकते हैं। अब ये सिर्फ इक्का दुक्का धोखाधड़ी के मामले नहीं रह गए हैं। AI की मदद से किए जा रहे ये स्कैम्स हर जगह हो रहे हैं, लेकिन अब आप जान चुके हैं कि ये कैसे काम करते हैं, इसलिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।
1: ਸਿਕਾ ਜੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁਇਕਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
2: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
3: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
4: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
3: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
4: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
3: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
4: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
3: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
4: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
6: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student Visa, Visitor Visa, Super Visa, LMIA Applications, Family Immigration, Provincial Nominee Application, ਅਤੇ Citizenship Application ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 403-225-1111। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, Asia Pacific Immigration Consulting Limited,
7: Regulated Canadian Immigration Consultant.
6: 403-225-1111.
5: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
1: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਬਰੰਗ ਡੋਟ ਸੀ ਏ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ

0: अलग अलग तरह के फूल और वो सब खिले ही रहे, फुलवाड़ी खिली रहे मानवता की, तो सही मायने में मजा आ जाए।
1: बिल्कुल, ये हम सबको सोचना चाहिए अच्छे तरीके से। आज मैं कई बार बंदा क्या होता भी अपने वर्ड से वो बात नहीं डिस्क्राइब कर पाता, पर एक्शन से थाउजेंड बेटर कर देता।
0: एक्शन तो वैसे ही शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स।
1: तो वो इस तरीके से होता। आज मैंने एक वो जो बुक का सुनारा था नेगेटिविटी को, आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए
0: और
1: आपको एक बड़े अच्छे तरीके से रिप्लाई करना चाहिए और रिस्पॉन्ड
0: करना चाहिए।
1: रिस्पॉन्ड वाला जो काम है ना वो आई थिंक भी वंडरफुल है, हम सबको अपनी जिंदगी में भी करना चाहिए और वैसे भी करना चाहिए।
0: नेगेटिव तो वैसे ही सबसे अंदर का सबसे बड़ा पोल्यूशन नेगेटिविटी है। एक वो बीज पड़ जाता है ना फिर पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, तो बेटर है कि उस बीज को उखाड़ दो। बिल्कुल, और प्यार ही प्यार बांटो।
1: बिल्कुल जी, प्यार ही प्यार बांटते रहना। और कहाँ पे और कैसे हो रहा थोड़ा उसके बारे में भी
0: जानकारी। ये स्टार्ट तो होगा सनंकारी भवन से, जो यहाँ यूनिवर्सल सेंटर फॉर वननेस है, 38502 52nd Avenue अपोजिट राजवीर बैंक्वेट हॉल, और फिर वो मैकनाइट के व्हाइट हॉर्न की तरफ टेम्पल की तरफ वो जो सारी ग्रास साइड ब्रिज है मैकनाइट ब्रिज, वो सारा आज सफाई होगी वहां पे 2:15 तकरीबन 2:15 वी आर स्टार्टिंग और ऑल द वॉलंटियर्स आर वेटिंग एट वननेस सेंटर। तो तकरीबन सारा फिर अलग अलग दिशाओं में बांट देंगे, 20-25 का ग्रुप एक साइड पे चला जाएगा, 20-25 का दूसरी साइड पे चला जाएगा।
1: तो इसका मतलब रेडियो से फाइनल जैसे इनको इंस्ट्रक्शन हो जाएगी भी अभी दो तो वो चले जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू राजेश जी।
1: इससे पहले एक छोटी स्टूडियो की ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम इस पे कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं एक छोटी कमर्शियल ब्रेक तो बाद, फिर स्टूडियो की ब्रेक तो बाद वापस मिलते हैं।
2: The time is 2 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: Everybody has their own reasons for drinking responsibly. The Brewers of Canada ask you to think about yours. Maybe you've got kids, or maybe it's that job you've been waiting a long time for. Maybe it's someone you love, or the parents who love you. This holiday weekend, whether you're relaxing at the cottage or just hanging around with your friends, if you're going to be drinking, please drink responsibly. Plan ahead for a safe trip home. We all have our own reasons. Think about yours.
1: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਫਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ radiosursangam.ca ਫੋਨ 403-585-0910 ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ
2: ਕੈਲਗਰੀਜ਼ ਓਲਡੈਸਟ ਬਿਗੇਸਟ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM
3: ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ 7 ਟੂ 8 PM ਸੰਡੇਜ਼ 1 ਟੂ 5 PM
2: ਵਿਜ਼ਿਟ sabrang.ca
4: The following program speaks to the East Indian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF
5: 94.7
6: FM. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
7: ਮਿਹਰਬਾਨੀ
6: ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਸੇ ਆਪ ਹਮੇ ਬਤਾਏ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਾਂ ਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਅਭੀ ਅਭੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਆ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏ
7: As I earlier said, कि सन नगारी मिशन की तरफ से दिस इज अ मिशन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड ये कोई और कोई डिफरेंट रिलीजन नहीं है ये बस एक प्यार का मिशन है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मिशन है जो हमेशा मानवता के लिए मानवता के भले के लिए प्रयास करता आ रहा है और पिछले 15 सालों से राजेश जी वी आर हैविंग दिस क्लैनिनेस ड्राइव तकरीबन वही मई जून के महीने में होती है और आज तकरीबन 215 ये शुरू हो रही है वो मैकनाइट ब्रिज तक और फिर रंडल व्हाइट हॉर्न टेम्पल के इलाके सारे जो होंगे उसमें हमारे तकरीबन 150 वॉलंटियर्स अलग अलग ग्रुप्स में सफाई करेंगे रोड्स के आस पास जो जगह है जो ग्रास है ऑन द रोड साइड और अगेन एज आई सेड कि प्रदूषण चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो दोनों ही बहुत इंसान के लिए ठीक नहीं है तो कहे हरदेव आपस में मिलवर्तन प्यार बढ़ाना है सुंदर धरती पर आए हैं इसे सुंदर छोड़ के जाना है तो वाकई ये हमारे मिशन का ही नारा कि मानव को हो मानव प्यारा एक दूजे का बने सहारा

0: फिर वो कहते हैं बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि कुछ भी बनो मुबारक है पहला बस इंसान बनो और फिर मुझे राजेश जी आपको देखते साथ ही मुझे शेरो शायरी याद आ जाती है आपका इतना नूरानी चेहरा वो कहते हैं ना कि इंसान का इंसान से कुछ ऐसा रिश्ता हो जाए इंसान का इंसान से कुछ ऐसा रिश्ता हो जाए कि इंसान ही इंसान के लिए फरिश्ता हो जाए तो वाकई फिर वो ये सारे इंसानों के लिए काम जो है कि सारे समाज के लिए काम आ सके तो वही मानवता का जो धर्म होता है ना सबसे सही धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है
1: बिल्कुल जी कह अपने लिए जिए तो क्या
0: क्या जिए बिल्कुल बिल्कुल
1: अपने वास्ते तो हर बंदा
0: जी लेता है बिल्कुल बिल्कुल
1: तो बट ये है कि कुछ करके जाना तो
0: बिल्कुल हम अपने आप को तो चमका के बड़ा खुश होते हैं कि हम सुंदर लगे लेकिन अंदर का मन भी अगर सुंदर हो जाए और बाहर समाज भी सुंदर हो जाए बाहर हमारा शहर वैसे इतना सुंदर है कैलगरी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी और इतने सुंदर मुल्क में है तो वो चाह भी हो हमें सफाई का ध्यान रखते हुए समाज के लिए भी बहुत बड़ा योगदान डालना
1: बिल्कुल जी बड़ा बहुत अच्छा मैसेज है आपका क्योंकि हमें इसको ब्यूटीफुल बनाना ब्यूटीफुल
0: थैंक यू
1: वैसे ब्यूटीफुल सिटी तो किसी किसी को बोलते हैं बट एक्चुअल में ब्यूटीफुल
0: बहुत सुंदर है यार बहुत सुंदर है पीपल आर वेरी फ्रेंडली एक दूसरे को स्माइल करो स्माइल करके जवाब मिलता है तो इतनी सुंदरता नजर आ रही है यहाँ पे
1: तो मैं वैसे भी अमृतसर तो
0: हाँ अमृतसर
1: वैसे
0: बड़ा बढ़िया शहर मैंने तो अमृतसर बचपन बहुत बिताया
1: मैं भी अमृतसर बचपन ही बताया उसके बाद बाहर निकल गए हैं बट ये अभी सारे दिल ची यादा
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: शहर दिया बहुत वधिया यादा ने साडा शहर जड़ा जिंदाबाद
0: बिल्कुल और थैंक यू राजेश जी जिन्नी बार भी तुहानू बेनती की है कि आज थोड़ा मैसेज देना ते तुसी हमेशा सानू बड़ा सोहना अकोमोडेट इवन ऑन द शॉर्ट नोटिस सो वी रियली रियली एप्रीशिएट और तुसी भी कदे आओ साडे कोल उत्थे साडे नाल मिलो सारे तकरीबन 300-400 एवरी संडे उत्थे वॉलंटियर्स होंदे ने ते जरूर तुसी किसे दिन उत्थे आओ साडे कोल और दीपक जी इफ यू वांट टू ऐड समथिंग देन
2: या जस्ट वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग आप कहीं भी रहें किसी भी वॉलंटियर ड्राइव में जुड़ें या ना जुड़ पाए अपने आसपास सफाई रखें जैसे कि हमने पहले भी सुना कि हमें जिस कंडीशन में ये अर्थ मिला है उससे बेटर कंडीशन में हमें हमारी सिटी हमारे आसपास की जगहों को रखना है उसका ध्यान रखें बस वही है दैट इज ऑल वी आर ट्राइंग टू स्ट्राइव फॉर
0: बिल्कुल
2: थैंक यू
0: थैंक यू जी
1: बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज है जी
0: बिल्कुल जी वी आर स्टार्टिंग एट 2:15 नाउ और अगर और भी हमारे साथ जो श्रोता सुन रहे हैं कोई जुड़ना चाहे तो प्लीज ज्वाइन अस मोस्ट वेलकम जी और एवरी संडे वहां पे 11 to 1 होता है कांग्रीगेशन कोई मानवता के सारे मैसेजेस होते हैं सब कुछ होता है कोई भी ज्वाइन करना चाहे प्लीज डू कम 3850 52nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट इज द सेंटर ऑफ वननेस एंड ऑल एवरीबॉडी इज वेलकम हां जी बिल्कुल सामने और थैंक यू राजेश जी वंस अगेन एंड मे गॉड ब्लेस अस ऑल
1: डेफिनेटली सरबत दा भला मनना चाहिए सो एदे नाल ही अज दा प्रोग्राम जेड़ा अगे वधावांगे ते इन दोनों भरावां को इजाजत लैनी
0: थैंक यू सो मच
1: ते फेसबुक वाले हां जी प्लीज थैंक यू ते मैं एक छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक लैना फिर इस तों बाद आपां बाकी दीआं गल्लां तां जिहड़ियां ने इसे तरीके नाल जारी रखते हैं जी सब रंग रेडियो 94.7 एफएम जड़ा कि तुसी मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे शाम नू 7 to 8 ते संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक सुनदे हो मिलते हैं एक छोटी जी ब्रेक तो बाद
3: खुशी समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नू कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है
4: हुण तुसी उनां नाल इंग्लिश हिंदी उर्दू ते पंजाबी विच वी गल्लबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो
3: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो
4: कॉल करो 5873606890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक वॉक-इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक
3: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890
4: थोड़े परिवार की सेहत साड़ी जिम्मेदारी

0: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0200-3400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेश

0: कीमोथेरेपी से कितनी अलग है। कीमोथेरेपी में एक दवा मरीज के शरीर में दी जाती है जो तेजी से बढ़ने वाले कैंसर सेल्स को मारने के लिए दी जाती है।
1: जो कीमोथेरेपी है वो कैंसर सेल्स को खत्म करती है, मतलब उनको मार देती है। और कीमोथेरेपी क्योंकि कैंसर सेल्स पे काम करती है तो नॉर्मल सेल्स पे भी इफेक्ट करती है, क्योंकि कीमोथेरेपी जो भी हमारे शरीर में सेल है जो कि डिवाइड कर रहा है उस पे काम करती है, तो हमारे नॉर्मल सेल्स भी डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपके टेस्ट बड्स, आपकी स्किन, तो उनपे भी काम करती है। तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं।
0: इम्यूनोथेरेपी यहाँ अलग है, ये खुद कैंसर को नहीं मारती बल्कि आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है ताकि वो कैंसर को पहचान कर उसे लड़ सके।
1: जो इम्यूनोथेरेपी है वो आपके शरीर के जिसको बोलते हैं ना इम्यून सिस्टम से इसके साथ काम करती है और आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है कि कैंसर सेल्स को पहचाने। बॉडी में हमारे टी सेल्स होते हैं उनके थ्रू, और उनको वो प्रशिक्षित करती है, एजुकेट करती है, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम जो कैंसर सेल्स को रेकग्नाइज करे और उनको खत्म करे।
0: जहाँ तक साइड इफेक्ट्स की बात है तो इम्यूनोथेरेपी में कीमोथेरेपी के मुकाबले कम साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन कोई भी दवा पूरी तरह बिना साइड इफेक्ट्स के नहीं होती।
1: ये कहना कि इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, कीमोथेरेपी के बहुत है, दोनों के साइड इफेक्ट होते हैं। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो इम्यूनोथेरेपी का होता है वो थकान। इम्यूनोथेरेपी के किसी भी अंग पे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लंग पे हो सकते हैं, हार्ट पे हो सकते हैं, ब्रेन पे हो सकते हैं, तो ये लाइटली नहीं लेना चाहिए।
0: इम्यूनोथेरेपी मुख्य तौर पर दो तरह की होती है। पहला CAR-T सेल थेरेपी, इसमें डॉक्टर आपके इम्यून सेल्स को निकाल कर लैब में उसे इस तरह बदलते हैं कि वो कैंसर को बेहतर तरीके से टारगेट कर सकें और फिर उन्हें वापस शरीर में डाल दिया जाता है। फिलहाल इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से ब्लड कैंसर में होता है।
2: CAR-T सेल्स में क्या होता है कि जो आपके खुद के टी सेल्स रहते हैं, जैसे हमने बात करी थी इम्यूनिटी में बहुत सारे जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें एक टी सेल रहते हैं, तो उनको टी सेल्स को लिया जाता है, पेशेंट के खुद के टी सेल्स को लिया जाता है और उसको मॉडिफाई किया जाता है एक स्पेसिफिक कैंसर पे अटैक करने के लिए। अभी ये जो कि हम बोलते हैं कि ब्लड रिलेटेड कैंसर, ब्लड कैंसर्स है ना, ALL, लिम्फोमास, अभी मेन रोल उसमें है इसका।
0: दूसरा, इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स कैंसर शरीर के डिफेंस सिस्टम को ऑफ कर देता है ताकि इम्यून सिस्टम उस पर हमला ना कर सके। ये दवाएं हमारे ही इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स की पहचान करने और उनसे लड़ने की मदद करते हैं।
2: ये ड्रग्स हम सॉलिड ट्यूमर्स में भी यूज करते हैं और इफेक्टिव हैं। तो इनका यूज अगर मैं बोलूं तो ज्यादा है, थोड़ा सा एज मतलब ज्यादा है काफी एज कम्पेयर टू हमारा CAR-T सेल्स।
1: तो कुछ कैंसर्स हैं जहां पे ये नहीं काम करती है, ब्रेन कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, लिवर के कैंसर में काम करती है पर इतना नहीं काम करती है जितना कि लंग कैंसर में, सर्विक्स कैंसर में और MSI हाई कोलोरेक्टल कैंसर में काम करती है, स्किन कैंसर में काम करती है। डी तो हर कैंसर में जा रही है पर कुछ कैंसर्स में ज्यादा इफेक्टिव है और कुछ कैंसर्स में नहीं इफेक्टिव है।
0: लेकिन इसकी कीमत क्या है, इम्यूनोथेरेपी आखिर कितनी महंगी है? इम्यूनोथेरेपी में इलाज का खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को कौन सी दवा दी जा रही है। आमतौर पर ये दवाएं 1 से 2 साल तक ही दी जाती हैं। कुछ मामलों में 2 से 3 लाख रुपए से शुरू होकर पूरे इलाज के दौरान 30 से 40 लाख रुपए तक पहुंच सकता है।
1: अगर एक दवाई है 4 लाख की, आपको 17 डोजेस देनी है 1 लाख में, तो 17 times 4, ठीक है, तो करीब उतना खर्चा आएगा। मैं आपको एक बॉल पार्क, जो सबसे कॉमनली यूज्ड इम्यूनोथेरेपी ड्रग है पेम्ब्रोलिज़ुमैब, उसका खर्चा बता रही हूँ। पर लेकिन जैसे जो फार्मा कंपनीज है उन्होंने स्कीम्स भी बनाई हैं, जैसे 1+1, उसको बोलते हैं पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम। तो अगर पेशेंट एक वायल खरीदते हैं तो दूसरी वायल फ्री होती है, तो 17 में से 8 डोजेस पेशेंट को फ्री मिलती है।
0: तो क्या इसे सच में कैंसर का इलाज माना जा सकता है?
1: फायदा आपको 70% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है और 20% भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कहाँ का कैंसर है, उसकी बायोलॉजी क्या है और सी इज कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट कितना फिट है इम्यूनोथेरेपी को झेलने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि

0: आप इम्यूनोथेरेपी हर मरीज को दे सकते हैं। आपको मरीज को सेलेक्ट करना भी बहुत जरूरी है।
1: 10-15% पेशेंट्स में रेस्पॉन्स ड्यूरेबल रहता है, और जब हम इसको कंबाइन करते हैं बहुत सारी बीमारियों में, कीमोथेरेपी के साथ में कंबाइन करते हैं, तो हमारा रेस्पॉन्स रेट बढ़ जाता है।
2: तो सीधी बात, इम्यूनोथेरेपी कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा कदम जरूर है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत रिसर्च होना बाकी है।
3: जी, सो ए सी जी क्वेश्चन का गलबा जेडी तुसी सुनी है, ते मैनू लगदा भी काफी इनफॉरमेशन जेडी है वो तुहानू मिल गई है हेल्थ दे रिलेटेड। ते क्वेश्चन चीजा आपा अगे वधाईए, ए आई दी फेक वीडियो उत्ते ते वैसे रिपोर्ट आपा सुन ली है, बट समा जिदा साढ़े कोल इहो जिहे प्रोग्राम दे विच आपा काफी गल्लां पता जेडियां तुहाडे नाल शेयर करदे हां, ते मेरी कोशिश हुंदी है वी एजुकेशनल इनफॉरमेशन जिहड़ी ओह वध तों वध दित्ती जाए, ते उहदे ते गल्लबात जिहड़ी है करिए आपां, ते उधरले पासे चलदे हां, क्योंकि एजुकेशनल इनफॉरमेशन जिहड़ी है ओहदे बारे भी थोड़ी बहुती ते एक्चुअल लाइफ दे नाल जुड़ियां जिहड़ियां गल्लां बातां ने ओह वी सानूं पता होनी चाहीदियां, क्योंकि आपां अक्सर कई चीज़ां जिहड़ियां ने ओह भुल जांदे हां ते फिर रह जांदे हां। जिंदगी जिहड़ी साडी है ओह बड़ी आम जी जिंदगी बन के रह जाती है, क्योंकि आप अपने आप में यह जे सिस्टम दे विच ट्रैप कर लैने आ, ते अक्सर लोगों को यह सुनदे आ वी जिंदगी का मकसद ही समझ नहीं आता, भी जिंदगी का मकसद की है, क्यों आप जिंदगी च आए हैं, की करना चाहते हैं की नहीं करना चाहते, ते स्पैशली मिडल क्लास के लोग जेडे ते बेचारे ऑल द टाइम स्ट्रगल कर रहे ने, हैंड टू माउथ हुंदे आ, ते ओ होर ज्यादा मेहनत करते बट रहिंदे बहुता सिर्फ उन्होंने अपने आप नू जिंदा रखन वास्ते या एक मेनटेन करने वास्ते काम करना पैंदा, ते दूजे पासे वो लोग जेडे अपने आप नू बहुत अमीर हुंदे आ ते उन्हां दी लाइफ जेडी ओह वी सुकून दे नाल जां आराम दे नाल निकलदी रहिंदी, बट मिडल क्लास लोग जेडे ने ओह EMI दे चक्कर दे विच जां जिहड़ियां किश्तां देनियां जां जेडे लोन ऑलरेडी आपां लै चुके हां अपने उत्ते सिर ते करजे जेडे पहलां तों ही ने, क्योंकि आपां अपना लाइफ स्टाइल इदां दा बनाया जां इदां इंजॉय कर रहे हां चीज़ां नू लै के, ते उहदे च आपां स्टक रहिंदे हां। सो इस करके जिहड़ी अगली गल्लबात आपां करन जा रहे हां सुन जा रहे हां रिपोर्ट विच तुहानू काफ़ी कुछ जिहड़ियां डिफरेंट चीज़ां सुन नू मिलणगियां, ते सुनदे हां रिपोर्ट फिर इस तो बाद वापस मिलते हैं।
4: इसलिए ध्यान से देखना, रात के 9 बज रहे हैं। गुड़गांव का एक IT ऑफिस, 26 साल का अमित सुबह 9 बजे से काम पर आया हुआ है, अभी तक वापस नहीं गया। मैनेजर ने 6 बजे एक और अर्जेंट टास्क दे दिया था। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक्सेल शीट खुली है, लेकिन अमित की आंखें वहां नहीं है। वो तो साइड में अपने फोन पर एक ट्रैवल व्लॉगर को देख रहा है। सुंदर सी पहाड़ियां, खुला नेचर, आजादी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही कटेगी? वैसे तो बाहर से सब सेट है, लिंक्डइन पर कुछ ही टाइम पहले प्राउड टू अनाउंस वाली पोस्ट डाली थी। पेरेंट्स कहते हैं बेटा सेट हो गया, दोस्त ने कहा अब तो मजे ही मजे हैं। सैलरी 12 लाख की थी। कुछ ही दिनों में लड़की वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ टूटा हुआ सा फील हो रहा था, एक तरह का खालीपन, एक तरह की नमनेस। और ये फीलिंग सिर्फ अमित की नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों की है। वो बंदा जो 25,000 की सैलरी में हर सुबह मेट्रो में कैंडी क्रश खेल रहा होता है, वो जो ऑफिस जाता है ट्रैफिक जैम में FM सुनता है, शाम को घर आता है, वीकेंड पर दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकलता है, IPL देखता है, और मंडे सुबह फिर से वही अलार्म, वही रूटीन, वही नंबनेस। इन्हीं लोगों के बारे में पाश ने लिखा था, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। नमस्कार दोस्तों, 2024 में गैलप ने दुनिया का सबसे बड़ा वर्कप्लेस सर्वे किया था, 1,40,000 लोग 160 से ज्यादा देशों में, और इसमें पाया गया कि दुनिया भर के वर्कर्स में से सिर्फ 23% लोग अपने काम में ट्रूली एंगेज्ड हैं, बाकी 77% या तो क्वाइट क्विटिंग कर रहे हैं या एक्टिवली डिसएंगेज्ड है अपनी जॉब में। साउथ एशिया और इंडिया में तो और भी बुरा हाल है, सिर्फ 21% लोग ही एंगेज्ड है, यानी 10 में से 8 से 9 लोग हर सुबह एक ऐसी जगह पर काम करने जाते हैं जहां उनका दिल नहीं लगता। ये लोग शाम को थके हारे घर पर आते हैं, वीकेंड का इंतजार करते हैं और फिर मंडे आ जाता है। ये साइकिल साल भर साल चलती रहती है, कभी कभी तो पूरी की पूरी जिंदगी। लेकिन जानते हो, यही सर्वे एक और चीज भी बताता है, वो 23% लोग जो एंगेज्ड है वो ना सिर्फ ज्यादा खुश है अपनी जिंदगी में, बल्कि वो 18% ज्यादा प्रोडक्टिव भी है, और उनकी कंपनीज 23% ज्यादा

0: प्रॉफिटेबल भी है। तो सवाल ये नहीं है कि पैशन फॉलो करना लग्जरी है या नहीं, सवाल ये है कि पैशन ना फॉलो करना कितना महंगा पड़ रहा है आपको, आपके आसपास वालों को और देश की इकोनॉमी को। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपके करियर, आपके पैशन और आपके सपनों के बारे में कुछ ऐसा एडवाइस देना चाहूंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो शायद ये आपके पूरे जीने का नजरिया बदल देगा, आपकी जिंदगी का ये सबसे जरूरी वीडियो बन जाएगा। फॉलो योर पैशन, दिल की सुनो, अंदर झांको, एक दिन सब क्लियर हो जाएगा। अमित ने भी ऐसी मोटिवेशनल रील्स बहुत देखी, कोई कहता क्विट योर 9 to 5 तो कोई कहता फॉलो योर हार्ट, लेकिन हर वीडियो को देखने के बाद वो और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता, क्योंकि दिक्कत ये थी कि जितनी बार उसने अपने अंदर झांकने की कोशिश की उतनी ही बार उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने सोचा शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ, शायद मेरे अंदर कोई पैशन है ही नहीं। यहाँ पर दो तरीके के लोग देखने को मिलते हैं, पहले वो जो कहते हैं अरे भाई ये पैशन वैशन कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, बस पैसे कमाने पर ध्यान दो, और दूसरे जो अमित की तरह कहते हैं कि मैं चाहता तो हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मेरा पैशन क्या है। असल में दोनों ही सोचने के नजरिए गलत है। 2018 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ये बड़ी लैंडमार्क स्टडी पब्लिश करी थी। इन्होंने पाया कि अमित जैसे लोग फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हुए होते हैं। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि पैशन जन्मजात है, कि अंदर कहीं पैशन छुपा हुआ है, बस ढूंढने की देर है, एक बार मिल जाए तो मैं भाग कर उसे फॉलो करने लग जाऊंगा। ये सोच गलत है। स्टडी के अनुसार पैशन कोई छुपा हुआ खजाना नहीं है, बल्कि एक पौधा है जिसे उगाना पड़ता है। प्रोफेसर कैल न्यूपोर्ट अपनी इस वाली किताब में लिखते हैं कि फॉलो योर पैशन इसलिए बुरा एडवाइस है क्योंकि ये आपको पैसिव बना देता है। अब हाथ धरे बैठे रहते हो कि कब पैशन मिलेगा, कब आसमान से पैशन टपकेगा। न्यूपोर्ट कहते हैं कि पहले किसी चीज में जेन्युइनली अच्छे बनो, स्किल डेवलप करो, मास्टरी से ऑटोनॉमी आएगी और पैशन वहीं से डेवलप होगा। तो फॉर्मूला ये नहीं है कि पैशन ढूंढो और फिर काम करो, फॉर्मूला ये है एक्सप्लोर करो, ट्राई करो, डीप में जाओ, स्किल बनाओ और पैशन खुद ब खुद आपको दिखाई देने लगेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर फॉर्मूला इतना ही आसान है तो देश में 80% से ज्यादा लोग ये क्यों नहीं कर पाते। नेहा की कहानी से समझते हैं। 34 साल की नेहा एक मैरिड वुमन है, इनके 2 बच्चे हैं, 12वीं के बाद ही शादी हो गई थी। सपना था शेफ बनने का, लेकिन 10 साल तक खुद से कहती रही मेरा वक्त निकल गया है। एक दिन इसने अपने बड़े बेटे के बर्थडे पर केक बनाया, बेहद सुंदर। एक पड़ोसन ने देखा और कहा अरे ये बेच क्यों नहीं देती, इतने सुंदर केक्स की तो तुम्हें दुकान खोल लेनी चाहिए। नेहा ने हंसकर टाल दिया, लेकिन पड़ोसन ने फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी और 3 ऑर्डर्स आ गए। अब आगे की कहानी वो है जो मोटिवेशनल वीडियोस आपको नहीं बताते। पहले 3 ऑर्डर्स में से 1 केक खराब हो गया। कस्टमर ने ऐसी कंप्लेन करी कि नेहा ने अगले 2 दिन तक घर पर कुछ भी खाना नहीं बनाया। वो सोचने लगी कि कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, अब ये सब बंद करना होगा, असल में मेरी औकात ही नहीं है ये करने की। पति ने उधर से और 2 बातें सुना दी,
1: अरे मैंने तो कहा था ना ये सब टाइम पास बकवास है, बंद करो ये सब करना।
0: और यही वो मोमेंट था दोस्तों जहां पर 80% से ज्यादा लोगों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। नेहा के सामने भी 2 ऑप्शंस थे, कंफर्टेबल चॉइस थी बंद कर देना, अनकंफर्टेबल चॉइस थी दोबारा से ट्राई करना, कंफर्ट भरी हुई गुलामी या डिसकंफर्ट भरी हुई आजादी। कुछ दिन बाद एक और ऑर्डर आता है किसी और पड़ोसी से, नेहा फिर से ट्राई करती है और इस बार केक अच्छा बन जाता है। अगले कुछ महीनों में ये चीज फिर से होती है। धीरे धीरे नेहा अपने काम में इतनी मगन होने लगी कि उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं रहा। नेहा जो यहाँ पर महसूस कर रही थी उसे साइंस में फ्लो स्टेट कहा जाता है। साइकोलॉजिस्ट सिस्क सेंट मिहाली ने साल 1990 में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हो कि आपको समय का पता ही नहीं चलता, ना भूख लगती है ना फोन देखने का मन करता है, जब आपका माइंड और आपकी बॉडी पूरी तरीके से 100% एक ही चीज पर फोकस्ड होती है, लेकिन आयरोनिकली इतना फोकस्ड होने के बावजूद आपको रिलैक्स सा महसूस होता है, इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो में लोग 500% तक ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ये तब होता है जब आप किसी काम के बारे में पैशनेट हो और काम का डिफिकल्टी लेवल ऐसा हो कि ना बहुत आसान ना ही बहुत मुश्किल, आपकी काबिलियत के अनुसार परफेक्टली चैलेंजिंग। नेहा को ये शब्द नहीं पता था, बस एक्सपीरियंस पता था। 14 महीने बाद नेहा जयपुर में आज क्लाउड किचन चलाती है। घर के अवन से शुरू किया था, 0 इन्वेस्टमेंट, आज जोमैटो और स्विगी पर रजिस्टर्ड है। लेकिन ये रातों रात नहीं हो गया, बीच में 3 महीने ऐसे भी आए जब कोई ऑर्डर नहीं आया। पति और सास ने प्रेशर किया कि बंद कर दो, लेकिन नेहा ने बंद नहीं किया। तो आपको वो काम ढूंढना है जिसमें आप फ्लो स्टेट महसूस करते हो, लेकिन ये सिर्फ सोचकर नहीं पता लगेगा, आपको करके देखना पड़ेगा। अब नेहा को तो पता था कि उन्हें कुकिंग पसंद है।

0: सिर्फ बनना है, लेकिन बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि उन्हें क्या पसंद है। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हो तो गलती आपकी नहीं है। जब आपकी स्कूल ट्रिप कभी किसी आर्कियोलॉजी साइट पर गई ही नहीं तो आर्कियोलॉजिस्ट होना एक्साइटिंग कैसे लगेगा? जब आपके फैमिली सर्कल में कोई ऑर्निथोलॉजिस्ट है ही नहीं तो आपके मन में ऑर्निथोलॉजिस्ट बनने का ख्याल कहां से आएगा? स्कूल में कभी स्कल्पचर ट्रायआउट नहीं करवाया गया तो स्कल्पचर होना आपका ख्वाब कैसे होगा? फेमस साइंटिस्ट के ऊपर हमने कोई बॉलीवुड फिल्म देखी ही नहीं तो साइंटिस्ट बनने का ख्याल कहां से आएगा? स्कूल में हमें साइंस रट्टा मारकर पढ़ाई जाती है, क्लासिकल म्यूजिक का कोई एक्सपोजर नहीं दिया जाता। हमें प्रकृति तो पसंद है लेकिन हम नहीं जानते कि एनवायरमेंटलिस्ट बनने का क्या स्कोप है। असल में दोस्तों दुनिया में 12,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड करियर कैटेगरीज हैं, लेकिन इंडिया में एक एवरेज स्टूडेंट को सिर्फ 10 से 15 करियर ऑप्शंस के बारे में ही पता होता है। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, सीए, एमबीएस, सरकारी नौकरी, क्रिकेटर, एक्टर और यूट्यूबर, बस खत्म कहानी। इसीलिए अगर आपको अपना पैशन नहीं पता तो इसमें गलती आपकी नहीं है, सिस्टम ने आपको एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया। प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं है, एक्सपोजर की है। डेविड एपस्टीन ने अपनी किताब रेंज में एग्जैक्टली यही पैटर्न डॉक्यूमेंट किया है। वैसे इस वाले एपस्टीन का उस वाले एपस्टीन से कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने पाया कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स ने शुरुआत में बहुत सी चीजें ट्राई की थी, जैसे कि रॉजर फेडरर। इन्होंने बचपन में फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट सब कुछ खेला था। ये सिर्फ बाद में ही था कि इन्होंने टेनिस में स्पेशलाइज किया। ऐसी ही कुछ कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की भी। उन्होंने बचपन में फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन सब ट्राई किया था। स्कूल में तो वो अपनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे, लेकिन बाद में जाकर वो क्रिकेट में सबसे महान प्लेयर बने। डेविड एपस्टीन लिखते हैं कि जो लोग जल्दी स्पेशलाइज करते हैं वो शॉर्ट टर्म में आगे निकलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सैंपलर्स जीतते हैं।
1: Essentially because they were made to choose so early that they more often made poor choices. So the late specializers lose in the short term and win in the long run.
0: Hundreds of world class performers पर स्टडी करने के बाद इन्होंने पाया कि जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए वो थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में एक सैंपलिंग पीरियड रखा, एक ऐसा समय जहां पर उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई आउट करी।
1: They gain broad general skills, they learn about their interests and abilities and delay specializing until later than peers who plateau at lower levels.
0: तो असल में दोस्तों पहला स्टेप पैशन ढूंढने का ये नहीं है कि अंदर झांको, पहला स्टेप है बाहर देखो, दुनिया बड़ी करो। 30 दिन के लिए हर दिन 30 मिनट तक एक नया करियर एक्सप्लोर करो। और इसी चीज में आपकी मदद करने के लिए मैंने आपके लिए ये फ्री PDF गाइड बनाई है, 100 करियर्स। इसमें 100 से ज्यादा करियर्स के बारे में एग्जैक्टली लिखा है कि उन्हें कैसे एक्सप्लोर करना है।
2: इस तो पहला भी आपां इते होर गलबात करिए, बट नाल दी नाल ही क्योंकि अक्सर कुछ लोग जड़े बहुत कॉलेज हुंदे ने या उन्हां दे पेरेंट्स जड़े ने उन्हां दा करियर पहले प्लान करके रखे हुंदे। मैनूं याद है भी कुछ एक दोस्त जदों आपां इंजीनियरिंग कंप्लीट करदे आ या ग्रेजुएशन कीती, कईआं ने उस तों बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कीती, MBA कीती, ते उह पहलां तों एक सैट पैटर्न डिसाइड कीता हुंदा वी उन्हें आह करना, इस तरह करना। तो हुंदा वी है क्योंकि जो आपां चाहुंदे आ उह सारीआं चीज़ां हुंदीआं साडे नाल जिंदगी दे विच, ते उह होईआं वी। बट जदों थोड़ा जिहा समां अगे निकल गए ते जिंदगी च देखिआ जा के ते इह ते आपां करना नहीं चाहुंदे क्योंकि साडा बंदा जिहड़ा इंसान ते कुछ डिफरेंट हुंदा। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕ, ਕੈਰੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਡ ਲਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 40-50 ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈੱਟ ਪੈਟਰਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਟ੍ਰੈਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਸਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਰਹੀਏ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ

0: एआईटी की कोचिंग करवाई, 3 से 4 लाख रुपए की कोचिंग फीस, बाद में कोटा भेजा। प्रेशर तभी से बन गया था, हॉस्टल में अकेले रहना, हफ्ते में 70-70 घंटे पढ़ाई, और अगर रैंक नहीं आई तो पेरेंट्स कहेंगे कि तूने तो पैसों पर आग लगा दी। जब तक वो 22 साल का हुआ और उसने किसी प्राइवेट कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग खत्म करी, एजुकेशन लोन बढ़कर 10 लाख तक पहुंच चुका था। पहली नौकरी मिली 25,000 की सैलरी पर, तो पहले 2-4 साल तो एजुकेशन लोन खत्म करने में ही लग गए। फिर एक नई बाइक खरीदी, ईएमआई, सैलरी जरूर बढ़ी लेकिन गाड़ी खरीदने का मन किया और ईएमआई। घर का सपना, होम लोन, 20 साल की ईएमआई। ये कहानी सिर्फ अमित की ही नहीं बल्कि देश में करोड़ों लोगों की है। सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है तो प्राइवेट स्कूल जाना पड़ता है, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है तो गाड़ी खरीदनी पड़ती है, सड़कों में गड्ढे हैं तो महंगी गाड़ी खरीदो, वाटर पोल्यूशन है तो प्योरीफायर खरीदो, और एयर पोल्यूशन है तो एयर प्योरीफायर लगाओ। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक और खर्चा, और हर खर्चे का सोल्यूशन एक और ईएमआई। जब आपकी आधी सैलरी ही ईएमआई में जा रही है तो टॉक्सिक जॉब भी छोड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। यही है सोने का पिंजरा, और इस पिंजरे का सबसे बड़ा कारण एक्चुअली में फोमो है। कहीं बाकी लोग बड़ी बड़ी फॉरेन ट्रिप्स ना कराएं, कहीं मुझसे बड़ी गाड़ियां ना खरीद लें, कहीं मुझसे महंगे कपड़े ना पहन लें, इसलिए मुझे अच्छे खासे पैसे कमाने पड़ेंगे, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। और इसी पिंजरे को मजबूत बनाया है हसल कल्चर ने। टॉक्सिक काम को रीब्रांड कर दिया, रात के 11 बजे तक ऑफिस में बैठो, ये डेडिकेशन है, और वीकेंड पे काम, ग्रोथ माइंडसेट है।
1: Our youngsters must say, I want to work 70 hours a week.
2: I don't think work-life balance is the right construct. Saturday, Sunday ka is not an Indian thing. This is a Western thing.
0: ये पिंजरा सिर्फ आपकी खुशी नहीं, literally आपकी जिंदगी आपसे छीन रहा है, और इस सिस्टम को तोड़ना आसान नहीं है। शुरुआत से ही गलत माइंडसेट आपको सिखाया गया, करियर एक्सपोजर नहीं दिया गया, कोचिंग इंडस्ट्री ने इस वैक्यूम को एक्सप्लॉइट किया, ईएमआई साइकिल ने नौकरी छोड़ना इम्पॉसिबल बना दिया, सरकार ने जीना मुश्किल बना दिया, और स्कूल से लेकर कॉलेज तक सिर्फ ओबीडियंस सिखाया गया। यही कारण है दोस्तों कि 85% लोग इसी सिस्टम में फंसे हुए हैं, और ये लोगों की गलती नहीं है। लेकिन अगर आप इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हो, इस सिस्टम को तोड़ना चाहते हो, तो आपके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान भी है। अमित जिस रात उस हॉस्पिटल के बिस्तर पर बैठा था, उसे एक ऐसी चीज याद आई जो उसने 14 सालों से नहीं करी थी, एक ऐसी चीज जो वो बचपन में अपने नाना जी के साथ किया करता था, वुड कार्विंग। एक दिन उसने वीकेंड पर यूं ही सोचा, चलो ट्राई करते हैं। 45 मिनट तक ट्राई किया, हाथ कांपे और रिजल्ट बड़ा बेकार था। उसे अपने नाना जी की याद आई और आंखें आंसुओं से भर उठी। लेकिन उस दिन एक और चीज हुई, उस 45 मिनट में उसने एक बार भी अपना फोन नहीं उठाया। अगले सैटरडे उसने फिर से कोशिश करी, 1 घंटा, इस बार धीरे धीरे मजा आने लगा था। तीसरे दिन 2 घंटे, एक हफ्ते बाद तो वो वीकडे पर भी मंडे को रात के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कार्विंग कर रहा था। दूसरे हफ्ते उसकी वाइफ ने उससे पूछा, अरे तुम रात को ये क्या करते रहते हो, लकड़ी का बुरादा साफ कौन करेगा। तीसरे हफ्ते एक कॉलीग ने उससे कहा,
3: अबे साइड बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग है क्या? हाँ सोच तो रहा हूँ। यार 2026 में कौन वुड कार्विंग करता है, इससे अच्छा कोडिंग करना सीख ले।
0: लेकिन उसने बंद नहीं किया। 1 महीने तक कार्विंग ट्राई करते रहने के बाद वो एक्चुअली में काफी अच्छा हो गया था अपने काम में। ऑथर जॉश कॉफमैन अपनी किताब में भी यही कहते हैं कि किसी भी नई स्किल को रीजनेबली गुड लेवल तक पहुंचने में सिर्फ 20 घंटे लगते हैं। सिर्फ 20 घंटे, मतलब हर दिन 45 मिनट लगाओ तो 1 महीने में पता चल जाएगा कि ये आपकी चीज है या नहीं। और एंजेला डकवर्थ का ये वाला रिसर्च पेपर देखो, इसमें बताया गया है कि सक्सेस का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर ना IQ है और ना टैलेंट है, ये है ग्रिट, GRIT, जो होता है पैशन प्लस परसिवियरेंस। और यहाँ पैशन का मतलब लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब एक ही डायरेक्शन में सालों तक लगे रहना उस काम में। डकवर्थ कहती है कि जिन लोगों में ग्रिट होता है वो लोग डेलिबरेट प्रैक्टिस करते हैं, यानी टारगेटेड इम्प्रूवमेंट पर फोकस करते हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर कैसे बना जाए इस चीज में लगे रहते हैं। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स में भी यही देखा गया, जिनका ग्रिट स्कोर ज्यादा था वो सर्वाइव करते थे, चाहे उनका एप्टीट्यूड स्कोर कम भी क्यों ना हो। स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन्स में भी यही देखा गया, ग्रिटी बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस करते थे और आगे जाते थे। और ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पैदाइशी हो, एक बार फिर से पैशन की तरह ये एक पौधा था जिसे उगाना पड़ता है, डेवलप होता है टाइम के साथ साथ। ये तब आता है जब आपको किसी काम में सच्ची दिलचस्पी हो, और दिलचस्पी तब आती है जब आप वो काम

करते हो, एक्चुअली में ट्राई करते हो। अमित ने जब 20 घंटे वुड कार्विंग में लगाए तब उसे पता चला कि ये वो चीज है जिसमें मुझे फ्लो स्टेट महसूस होता है। और उसके बाद की जर्नी 2 साल की थी। पहले उसने इंस्टाग्राम पेज बनाया, पहले 4 महीने में सिर्फ 200 फॉलोअर्स आए, कोई सेल नहीं, 6 महीने तक 0 इनकम थी, वाइफ का पेशेंस खत्म हो रहा था, उसने ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। लेकिन फिर एक दिन एक NRI ने उसके पीस को देखा इंस्टाग्राम पर और ऑर्डर कर दिया $47। पहली सेल $47 की। आज 2 साल बाद उसकी साइड इनकम 25,000 से 30,000 रुपए महीने की है। नौकरी अभी भी करता है लेकिन अब उसके पास एक एग्जिट प्लान है। और सबसे बड़ी चीज, पैनिक अटैक्स, वो पूरी तरीके से बंद नहीं हुए अभी भी। कभी कभार अभी भी उसे पैनिक अटैक्स आते हैं, लेकिन अब जब उसे पैनिक अटैक आता है तो वो वर्क बेंच पर जाता है और लकड़ी में छेनी लगाता है। 45 मिनट बाद अपने आप ठीक हो जाता है। डॉक्टर ने पूछा कि क्या फर्क है पहले और अब में, क्या बदला? उसने जवाब दिया, पहले मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था जो सिर्फ मेरा हो, अब है। अब आप शायद मुझसे पूछोगे कि यार अमित को तो फिर भी वुड कार्विंग की याद आ गई, लेकिन मुझे तो अभी भी नहीं पता कि मेरा पैशन क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा 3E फॉर्मूला देना चाहूंगा जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है। 3 E's, एक्सप्लोर, एंगेज एंड एक्सेल। पहले 30 दिन के लिए आपके लिए पहली स्टेप है एक्सप्लोर, यानी अपनी दुनिया को बड़ी करो, नए नए करियर्स को एक्सप्लोर करो। शू पेंटर से लेकर ट्रेकिंग गाइड तक, क्लाउड किचन से लेकर मरीन बायोलॉजिस्ट तक, 12,000 से ज्यादा करियर कैटेगरीज हैं और आप अभी भी 10-15 को ही जानते हो। आपकी मदद करने के लिए मैंने एक फ्री PDF गाइड बनाई है जिसमें 100 अलग अलग करियर ऑप्शंस लिस्टेड है, 100 डिफरेंट करियर ऑप्शंस, अलग अलग कैटेगरीज में इन्हें अरेंज किया है और इसमें डिटेल में लिखा है मैंने कि एग्जैक्टली इन करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कैसे करना है, क्या स्किल्स आपको चाहिए और शुरुआत आप कैसे कर सकते हो। इवन ये तक लिखा है कि इन करियर्स को एक्सप्लोर करने का खर्चा कितना आएगा। ये कंप्लीटली फ्री टू डाउनलोड है आपके लिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। आप जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इन 100 अलग अलग करियर्स पर नजर डालिए और पहली नजर में इनमें से जो 30 आपको बेस्ट लग रहे हैं उन्हें चुन लीजिए। अगले 30 दिन तक आपको 30-30 मिनट लगाने हैं हर एक करियर को एक्सप्लोर करने में और ये जानने की कोशिश करनी है कि आपको इस काम में मजा आएगा कि नहीं आएगा। और ये भी याद रखिए कि 100 करियर ऑप्शंस 12,000 पॉसिबल करियर्स का सिर्फ एक सबसेट है। स्टेप 2, एंगेज, यानी अपने हाथ गंदे करो। इन 30 करियर्स को जब आपने एक्सप्लोर किया होगा तो उसके बाद कुछ ऐसी चीजें आपको लगी होंगी जो आपको एक्साइट करती हैं और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको इतनी पसंद नहीं आई। अब जिन चीजों को लेकर आपको अंदर से एक्साइटमेंट फील होती है उनकी लिस्ट बनाना चालू करो। इस लिस्ट में 5 से 7 ऐसे करियर्स लिखो, ज्यादा नहीं। इन लिस्ट में मौजूद चीजों को अब आपको एक्चुअली में ट्राई करना होगा, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स करने होंगे 20-20 घंटे के लिए। ये 20 घंटे की लिमिट जॉश कॉफमैन का थ्रेशोल्ड है। आपने 5 चीजें चुनी है तो हर एक पर 1 महीना लगाइए। 20 घंटा 1 महीने में होता है रोज के 45 मिनट। ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एग्जैक्टली कैसे किए जाएंगे उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो आपने फोटोग्राफी एज ए करियर चुना, इसमें एंगेज करने के लिए आपको कम से कम 100 फोटोज लेनी होंगी। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी में जाना चाहते हो तो किसी शादी को अटेंड करो, वहां पर बात करो और उन्हें बोलो कि मैं फ्री में वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। 20 घंटे तक एंगेज करो अपने आप को इस काम में। ऐसे ही अगर केक बनाना आपको एक्साइट कर रहा है तो इसमें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होगा कि आप अपने पड़ोस में लोगों को कहो कि मैं आपके लिए केक बनाऊंगा। अपने नेबरहुड में एक फ्री पार्टी रखो, सबको इनवाइट करो अपना केक खिलाने के लिए। अगर आपने राइटिंग एज अ करियर चुना तो कम से कम 10 ब्लॉग पोस्ट लिखो। अगर आपने कॉन्टेंट क्रिएशन अपना करियर चुना तो कम से कम 20 घंटे लगाओ अलग अलग वीडियोस को बनाने में। कुछ चीजों में थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, जैसे शू पेंटिंग जैसी चीज सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन शू पेंटिंग का मतलब है आप जूतों पर एक्रेलिक से पेंट करो और ये बड़े सुंदर सुंदर दिख सकते हैं। ऐसे जूतों का मार्केट होता है, कई सारे छोटे छोटे बिजनेसेस इंस्टाग्राम पर इन्हें बेचते हैं। तो अगर ये करना है तो 20 घंटे के लिए आप शू पेंटिंग करो, देखो आपको कितना मजा आ रहा है करते हुए और कितना अच्छा आप कर पा रहे हो। ऐसे ही कस्टमाइज्ड टी-शर्ट्स की भी मार्केट है। अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है तो फ्री में ट्रैक गाइड बनो किसी के लिए। अगर आप वीकडेज में अपनी 9-to-5 जॉब में बिजी हो या स्कूल में बिजी हो तो वीकेंड पे अपना पैशन प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक वैसे ही जैसे नेहा ने अपने घर पर केक बनाना शुरू किया था। वीकेंड पर शुरू किया बच्चों के सोने के बाद, अमित ने ऑफिस के बाद रात के 9 से 11 बजे अपनी वुड कार्विंग करी। और एंगेज करते वक्त इस चीज का ध्यान रखो कि आपको ये फ्लो स्टेट किस चीज में महसूस हो रहा है, क्योंकि फिर आती है स्टेप 3, एक्सेल। अपने काम में इतने अच्छे बनो कि इग्नोर करना मुश्किल हो जाए। इन 5-7 ऑप्शंस में से एक ऐसी फील्ड को चुनो जिसमें आपको सबसे ज्यादा फ्लो महसूस होता है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस होती है। अब पॉइंट आता है स्किल्स बिल्ड करने का।

ना करे काम करने का, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। इवन मैं भी जिन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा पैशनेट हूँ उन कामों में भी कभी कभार ऐसी फीलिंग आती है कि आज मन नहीं कर रहा, अब मैं बोर हो गया हूँ ये करके। लेकिन ऐसे समय में ही आपको बने रहना है, डेडिकेशन जरूरी है। याद रखो, ग्रिट पैदाइशी नहीं होता, ये बनता है एग्जैक्टली इसी फेज में। कम से कम 6 महीने लगाओ एक्सेल करने में, और इस स्टेप के बाद जब 1 साल पूरा हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप जिस काम को पसंद करते हो, आप जिस काम के बारे में पैशनेट हो, जिस काम में अच्छे हो, उससे फिर साइड इनकम भी कमा पाओगे। नेहा ने जोमैटो पर रजिस्टर किया, अमित ने एटसी पर लिस्टिंग करी, इंस्टाग्राम पर पेज बनाया। सोशल मीडिया के थ्रू आज के दिन काफी आसान हो गया है अपने पेजेस बनाना, जहां पर आप अपनी स्किल को शो ऑफ कर सकते हो, लोगों को अपनी चीजें बेच सकते हो। जब साइड इनकम सैलरी का 30-50% पहुंच जाए, तब आप ट्रांजिशन की प्लानिंग शुरू कर सकते हो। तब आप फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि कैसे अपनी टॉक्सिक जॉब को छोड़ना है और अपने सपनों की जिंदगी जीनी है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है। अगर आपको टीचिंग पसंद है तो आप सरकारी टीचर बनकर भी अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। अगर आप सेम फील्ड के अंदर बेटर कंपनी ढूंढना चाहते हो, वो भी वैलिड है। पैशन का मतलब हमेशा स्टार्टअप बनाओ नहीं होता। जापान में एक कॉन्सेप्ट है इकीगाई का, इसका मतलब है वो चीज जिसके लिए सुबह उठने का मन करे। जापान के ओकिनावा में, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं, उनकी लैंग्वेज में रिटायरमेंट का कोई शब्द ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास इकीगाई है, एक पर्पस जो उनको जिंदा रखता है। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग इकीगाई को प्रैक्टिस करते हैं, उनके अंदर हार्ट अटैक्स का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ये लोग बहुत लंबी उम्र जीते हैं। और ये इकीगाई बनता है 4 चीजों के इंटरसेक्शन से। पहला, वो जो आपको करना पसंद है, व्हाट यू लव। दूसरा, वो जिसमें आप अच्छे हैं, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट यू एक्सेल एट। तीसरा, वो जिसकी दुनिया को जरूरत है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। और चौथा, वो जिसके लिए लोग पैसे दे, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। अगर आप एक ऐसा काम ढूंढ लेते हो जो इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब है कि आपको अपना इकीगाई मिल चुका है। जैसे कि मेरे केस में, मेरा इकीगाई है वीडियोस बनाना। ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मुझे ये वीडियोस बनाने बहुत पसंद है। मैं इस काम में ठीक ठाक भी हूँ, अच्छा भी हूँ, और कह सकते हो कि दुनिया को इसकी जरूरत भी है, और ऑफकोर्स इससे पैसे भी कमा लेता हूँ। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि पहली दो चीजें पैदाइशी नहीं आई है मेरे अंदर। मैं बचपन से पैदा नहीं हुआ था कि बचपन से ही मुझे वीडियोस बनाने का शौक आ गया और मैं उसमें अच्छा हो गया। आप अगर मेरे 10 साल पुराने वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, तो आपको दिख जाएगा कि क्वालिटी में कितना जमीन आसमान का अंतर है। मुझे ये चीज पसंद आई क्योंकि मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने ढेर सारी अलग अलग चीजें ट्राई करी, और ये बाय चांस एक चीज ऐसी निकल गई। और मैं इस चीज में अच्छा बना क्योंकि मैंने फ्लो स्टेट को एक्सपीरियंस किया। ग्रिट था, मैं लगा रहा इस काम में पैशन के साथ। प्रॉब्लम यह है कि लोग इस इकीगाई के डायग्राम को देखते हैं और इसे सॉल्व करने बैठ जाते हैं। इस डायग्राम में कुछ सॉल्व करने का नहीं है। इकीगाई को डिस्कवर नहीं किया जाता, इकीगाई को बनाया जाता है। नेहा को पहले दिन से नहीं पता था कि केक बेकिंग उसका इकीगाई है, 14 महीने बाद पता चला। अमित को पहले दिन से नहीं पता था कि वुड कार्विंग उसका इकीगाई है, उसे 1 साल बाद पता चला। अब मैंने आपको पूरा A to Z प्लान डिटेल में बता दिया है। क्या बहाना है आपके पास? कुछ लोग कहेंगे, यार मेरी तो उम्र हो गई है, ये बचपन में किया होता तो बेटर होता। लेकिन जानते हो क्या, करियर चेंज की एवरेज एज ग्लोबली है 39 ईयर्स, 39 साल। नेहा ने 34 में शुरू किया था, वो सोचती है कि काश 24 में किया होता, लेकिन 34 में करना 44 में करने से बेटर है। रिसर्च ये दिखाती है कि चाहे किसी भी उम्र में अपना करियर चेंज करो, अगर आपको अपना पैशन मिल गया तो आप जिंदगी में ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे। अब कुछ लोग यहाँ बहाना देंगे कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, इसलिए तो मैंने वीकेंड रूल बताया, पहले रिजल्ट्स दिखाओ फिर बात करो। अमित ने जब अपनी पहली सेल करी $47 की, तब उसने माँ को बताया, और माँ ने पूछा ये डॉलर में है, उसके बाद कोई सवाल नहीं आया। पेरेंट्स को दिखाना पड़ता है, कन्विंस नहीं करना पड़ता। अब तीसरा बहाना है कि पैसे नहीं है, लेकिन मैंने जो लंबी PDF की शीट दी है, उसमें से ज्यादातर करियर्स ऐसे हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता एक्सप्लोर करने में। बाकी सब में बहुत कम पैसे से शुरुआत की जा सकती है। नेहा ने घर के अवन से शुरू किया। एक्रेलिक पेंट सेट सिर्फ 300 रुपए का होता है। कॉन्टेंट राइटिंग के लिए सिर्फ लैपटॉप चाहिए होता है। मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद एक भी बहाना रह जाएगा आपके पास अपना पैशन ना फॉलो करने का। और रिसर्च में दोस्तों एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है, जो मैं देखकर भी काफी हैरान हो गया। सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जो लोग साइड पैशन प्रोजेक्ट रखते हैं, उनकी प्राइमरी जॉब परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर होती है, बर्नआउट कम होता है। मतलब ये आइदर और का ऑप्शन नहीं है कि नौकरी चुनो या पैशन चुनो। पैशन प्रोजेक्ट

0: एक्चुअली में आपकी नौकरी को भी बेटर बनाता है। अगर आपके अंदर भी एक आवाज उठती है कि मेरी जिंदगी में मुझे कुछ और भी करना चाहिए था, तो प्लीज उस आवाज को दबाइए मत। 85% लोग उस आवाज को दबा देते हैं, रोज सुबह अलार्म बजेगा और फिर से वही रूटीन में घुस जाएंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो बेचैनी अभी भी जिंदा है। उस बेचैनी को जिंदा रखिए, वो आपकी सबसे वैल्यूएबल चीज है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां 65% आबादी 35 साल से कम की है। दुनिया की सबसे यंग वर्कफोर्स है हमारे पास। अगर सबके सब सिर्फ यही 10-15 सेफ करियर ऑप्शंस में घुस जाएंगे तो देश कैसे इनोवेट करेगा। आप अपना पैशन फॉलो करके सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहे बल्कि इस देश का फ्यूचर भी शेप कर रहे हैं। तो आज रात सोने से पहले इस PDF को डाउनलोड कीजिए। अगर आपके घर में प्रिंटर है तो प्रिंट करा लीजिए, अगर प्रिंटर नहीं है तो इसे फोन में सेव कर लीजिए। 1 घंटा लगाकर आपको इन 100 करियर ऑप्शंस की लिस्ट पढ़नी है और टिक मार्क करना है उन 30 ऑप्शंस को जिनमें आपको इंटरेस्ट आता है। ऐसे 30 करियर्स की लिस्ट बना लीजिए और इसके बाद कल से सिर्फ आधा घंटा लगाना है आपको। पहले करियर को एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आपको देखेगा नहीं। फोन पर बस टाइमर लगाओ और चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करो। जो भी हो, चाहे ड्राइंग हो, कुकिंग, कोडिंग, सिंगिंग, राइटिंग, बिल्डिंग, कुछ भी, ये 45 मिनट सिर्फ आपके हैं। और याद रखना, 20 घंटे और 1 महीना बस इतना ही चाहिए शुरू करने के लिए। अगर इस मुद्दे में और गहराई में जाना चाहते हो और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस अगर आप चाहते हो तो पूरी की पूरी एक ईबुक और ऑडियो बुक मौजूद है ध्रुव राठी एकेडमी पर। भाड़ में जाए वो नौकरी, टू हेल विद दैट जॉब, दोनों इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। ये 7 घंटे की ऑडियो बुक है एग्जैक्टली इसी चीज पर। तो अगले 1 महीने के लिए आपको कॉन्स्टेंट मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता रहेगा। और इसका पहला चैप्टर बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ क्लिक करके अभी सुनना स्टार्ट कर सकते हो। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये सी जी ध्रुव राठी की रिपोर्ट, जेडी की मिडिल क्लास के ट्रैप चो कि निकलना, वो बारे प्रोपर इन्फॉर्मेशन जी है तुसी सुनी है। तो कि कई बार की आप सोच रहे भी शायद जिंदगी आ गए तो बाहर निकलना पॉसिबल नहीं। इन्होंने कंट्रीज के बहुत कुछ जो बड़े आराम न हो जाता, इस करके जे तुम ते अंदर कोई गुण छुपया बैठा तो उन्होंने उभारो तो ही अपनी जिंदगी जो अगे लैके जाओ। तरीके भी इन्होंने दसते हैं किस तरीके कि तरह की जॉब जीडिया ने तुम कर सकते हो। अज के प्रोग्राम च इस सिलसिले को अगे बधावे तो साढ़े को गैस साढ़े पहुंच चुके हैं प्रदीप बैनीपाल जी, जेडे कि स्पैशल गलबात करने वास्ते आए हैं। विसाखी के मेले के उत्ते कुछ किया जाएगा वो बारे जानकारी देने। बट उस तो पहले एक छोटा जा कमर्शियल ब्रेक लेने, ब्रेक लेके वापस मिल जाते, बाकी गल्लां जिहड़ियां ने इस ब्रेक तो बाद करांगे। सबरंग रेडियो ने
2: फिजिशियन दा स्वागत करता है।
3: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नूं कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
2: हुण तुसी उनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गल्लबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
3: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
2: कॉल करो 5873606890 लाइफ मेडिकल क्लिनिक, वॉक इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
3: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890।
2: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।

0: ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ
1: ਜਿਹੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
2: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
3: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
2: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
3: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर
2: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
3: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
2: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
3: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
4: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग कोई खास इवेंट प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं हमारी टीम पहुंचती है आपके पास लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में ज्यादा पहचान ज्यादा भरोसा ज्यादा ग्राहक अपने बिजनेस को बनाइए खास दिखाइए सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
5: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIE applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillo ate Inderjot Kaur Tillo ikko chhat he immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde han. Sanu sampark karn layi 403-225-1111 Maninder Singh Tillo Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
6: Regulated Canadian Immigration Consultant.
5: 403-225-1111.
4: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca,

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा लिसनिंग टू कैलगरीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store opening

0: I speak very calmly and quietly. But then on that day, I speak with so much energy and everybody loved it. The energy was wild as you can see from the video.
1: ये हैं 20 साल के अयुबा गॉड्सविल अमेथे। जनाब नाइजीरिया से हैं और इस वक्त भारत की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अयुबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में वो धाराप्रवाह हिंदी में भाषण देते दिख रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यूनिवर्सिटी के नदीम कुरैशी हॉस्टल में छात्र संघ चुनाव के उम्मीदवार की तरह प्रचार कर रहे हों। लेकिन जब बीबीसी ने अयुबा से बातचीत की तो पता चला कि ये भाषण किसी भी चुनावी प्रचार का हिस्सा नहीं था। दरअसल ये एक कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा था जहां अयुबा एक स्किट में अभिनय कर रहे थे। उनका हिंदी भाषण इसी पेशकश का हिस्सा था।
0: Okay, now as a Nigerian now, the energy will be so much good if a Nigerian is speaking in Hindi to the students. And I saw that they loved to see me speak in Hindi. So my roommates, they wrote some poets and some promises that I would fulfill for the hostel. And then I practiced the Hindi script for like a day, like one day was enough for me. And so yeah, and it was very good when I presented the speech and it was very perfect. So yeah, I love this.
1: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। ये स्किट इस बात की कल्पना थी कि अगर चुनाव होते तो कैंपस में किस तरह के भाषण सुनने को मिल सकते थे।
0: To be honest, after the speech, when I went down the stage, my friends, everybody was around me. Then I asked them, was my pronunciation very good? And they was like, you did very well. On the stage, I was thinking maybe I made some mistakes in the pronunciation. Living in India now for 2 years now, going to the market, you have to learn how to speak with the market men and the sellers in the market. So I know some common numbers and I can communicate with the rickshaws when I'm moving around. I know my way around.
1: अयुबा बताते हैं कि भारत में पढ़ाई करने की दिलचस्पी उन्हें बॉलीवुड फिल्में देखकर हुई थी, इसी वजह से उन्होंने यहाँ आकर पढ़ने का फैसला किया।
0: I've watched a lot of movies, Indian movies. I've watched like the Three Idiots. I've watched Bahubali. Like the Indian movies is a big thing back in Nigeria. We'll watch a lot of movies. So looking at it, the engineering colleges are very good. You watch a lot of dramas among the engineering colleges. So and then an opportunity came for me to come down to India, and then I said, well, all right, let me just give it a try. Well, walking around the campus now as in Nigeria, and you get some sort of questions and curiosity. People are very curious. Where are you from? Your name? Why, like, what made you come to AMU?
1: वहीं सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अयुबा की हिंदी और उनके आत्मविश्वास भरे प्रदर्शन की तारीफ की है।
0: I'm still processing it, to be honest. And when I, after the speech, like on, it happened on Saturday. On Sunday, there was nothing. And then I think it started going viral. Somebody uploaded like a story and then some channels saw it and everybody started sharing it and everything. I have not told them it's viral here. I sent them the video. After the night I spoke, I sent them the videos. My brothers, they were very amazed. Yeah, so my parents also, they were very surprised, like, oh, Ayuba is speaking Hindi. They were very surprised. Agar Maksad Pura Karna Hai, To Vot DGA. That was a good line as well, so yeah.
2: Do you know the meaning of this line?
0: Well, I know Maksad means is a very good word. But I can't tell the whole meaning of this, so yeah.
3: ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ, ਸੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੰਡੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿੱਕੀ ਹੁਜਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कंट्रीज मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सब लव 94.7
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
4: Asia Pacific Immigration Consulting Limited.

0: दो ओवर उन्होंने वैसे भी नहीं खेडे, पूरे सब आउट हो गए, और उस बाद पेशावर जलमी ने जड़ा 130 रन बना के 5 विकटा ने नुकसान से 15.2 ओवर लक्ष्य जड़ा करना चाहता वह कंप्लीट कर लिता।
1: फाइनल मैच
0: हाँ जी फाइनल
1: लो स्कोरिंग मैच हो
0: लो स्कोरिंग मैच होया जबकि स्कोरिंग ज्यादा होनी चाहिए लेकिन क्योंकि हैदराबाद वालों किसी ने बैटिंग ही नहीं की उस सिर्फ इधरों साइम ने अज काफी दिन के बाद 54 रन किए ने 50 बॉल्स के उत्ते और पांच चौके मारे ने दो छक्के उन्होंने ग्लैन मैक्सवेल ने मेन प्लेयर उन्होंने भी रन नहीं किए जीरो से आउट हो गए लबिशन जो कैप्टन सन हैदराबाद के उन्होंने सिर्फ 20 रन बनाए ने तो अगर बैटिंग ऑर्डर ताड़ा नहीं चलेगा विकटा डिगदियां जानियां तो फिर तुसी एक लंबे स्कोर रूम करना बहुत मुश्किल हो जाए किसी भी टीम वास्ते
1: बिल्कुल बिल्कुल तो यही हाल वैसे अज पंजाब किंग्स की टीम का भी
0: अच्छा, होया अच्छा
1: तो उन्होंने वालों भी बहुत ही स्कोर नहीं मारी गई जो वधिया प्लेयर खेल रहे थे वह बेचारे झड़ते गए जल्दी
0: अच्छा जी
1: तो बहुत लंबा चौड़ा स्कोर जो टीम नहीं कर पाई जिदे करके टीम अज थोड़ा जल्दी लटकी। मैं जो देखा मैच वैसे लेट स्टार्ट किया तो उस टाइम तक हालत जी पतली चल रही थी
0: इस लिए कोचिज जड़े ने यही कहते हैं कि बई बेशक है T20 गेम है बड़ी फास्ट गेम है बट ए भी पार्टनरशिप लगनिया बड़िया जरूरी ने ईवन यूर बैटिंग फर्स्ट ईवन यूर बैटिंग सैकेंड
1: पर दूजे पास यह है कि भी यह जरा सुहेल जी जरा मैच सीगा बेसिकली क्योंकि जो तुसी पहला खेल दे हो तो तुहानू पता नहीं लग पाता भी तुसी किन्नी स्कोर बनानी है किस तरह करना
0: हाँ
1: किस नहीं करना तो जिदे करके काफी टफ रहा पंजाब किंग्स वास्ते जेडे कि लगातार मैच जीते आए 6 वैसे मैच उन्होंने जीते है एक टाई होया जिदे करके उन्हां को 13 रन होने दे नाल 9 मैच च हाले भी नंबर 1 ते बने है।
0: अच्छा जी
1: हां जी पंजाब किंग्स जेडे ने इस वारी पक्का पंजाबी जेड़े ही छाए है पूरे
0: हाँ जी
1: चाहे आज गुजरात को हार गए मैच हाँ बट स्टिल नंबर 1 ते
0: नहीं एक अद्धा मैच तो हुंदा ही जाहिर है हाँ जी
1: जी ते थोड़ा जे मैच हारे है बट अगेन स्कोर जेड़ी है बड़ी वधिया ते नहीं कह सकते अज दे मैच दे विच मारी 163 स्कोर सीगी जेड़ी उन्होंने कीती ते दूजे पासे गुजरात टाइटन दी टीम जेड़ी सीगी उन्हां वल्लों साई सुदर्शन जेड़ा जी इस बार भी वधिया चमका पिछले भी उन्हें 50-100 मारी सी ते हुण तीसरा मैच जिदे च उन्हें 51 अगेन 57 कीती है 41 बोलां च ते शुभमन गिल जेड़े कैप्टन ने हालांकि पंजाबी है बट गुजरात दी टीम दे कैप्टन ने साडे ते ए 5 स्कोर अज बना सके 4 बोलां दे उत्ते बाकी दे प्लेयर जेड़े सीगे उहदे च वाशिंगटन सुंदर जेड़ा सीगा जी उन्हें लास्ट दे उत्ते
0: चंगी सुंदर बड़ा अच्छा प्लेयर हां जी अच्छा प्लेयर हां जी
1: लास्ट 6 भी मारा बट वधिया मैच जेड़ा सुरेश अय्यर जेड़े नहीं
0: सुरेश
1: उन्हें फसालिया सीगा क्योंकि लगातार इदा लगदा पिया सीगा भी गुजरात टाइटन दी टीम जेड़ी है स्कोर करदी जा रही है ते जल्दी जित जाणगे उह बट लास्ट बॉल तो एक बॉल पहला तो मैच फसिया रहा ते लास्ट दे ओवर दे विच उन्हां नूं 7 बॉलां च 12 स्कोर चाहीदी सीगी
0: अच्छा जी
1: ते जिथे लास्ट दे ओवरां दे विच 4-4 बॉलां स्कोर दे के विकट लैंदे रहे ते उहदे नाल लगता सीगा भी कई बार फिर 12 स्कोर भी बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती
0: बड़ी मुश्किल
1: पर अनफॉर्चुनेटली जरा मैं अनफॉर्चुनेटली इस करके कह रहे हैं क्योंकि पंजाब की टीम हार गई बट उसका कोई बहुत फर्क नहीं पाया क्योंकि ये
0: एक चीज मैं कॉमन जी देख रहा उधर शबनम गिल कैप्टन उन्हें रंज नहीं किए इधरों बाबर आजम कैप्टन पेशावर जलमी का उन्हें रंज नहीं किए उधरों लबिशन कैप्टन हैदराबाद का उन्हें रंज नहीं किए अज कैप्टन का लगता अज दिन नहीं सी
1: बिल्कुल जी ये जड़ा सी ये ओवरऑल पिछले मैच भी जड़े ने दिल्ली वाले वालों काफी वधिया खेले गए जी राजस्थान रॉयल नू हरा के ते बाहर करता गया ते हालांकि दिल्ली जड़ा 7वें नंबर ते नजर आ रहा सो पंजाब किंग्स वंस गए 9 मैच खेले 6 जितया 2 हारिया 1 जड़ा ओ टाई होया बेसिकली ते इस करके जड़े लास्ट दे जड़े 5 मैच होए उन्हां दे विच लॉस्ट लॉस्ट विन विन विन ये पंजाब दा सीगा ते 13 पॉइंट दे नाल आ रहे जी जी
0: अच्छा बस पेशावर जलमी ने जड़ा फाइनल जीत लिता उन पेशावर जलमी वालों जड़ा बाबर आजम ने रन नहीं किए वो कैप्टन सन ते कुशाल मेंडस जो भी अज 9 रन बना सके और लेकिन अरुण हार्डी जड़े ने उन्होंने सारी गेम चुकी और वो जड़ा अपनी टीम नु जड़ा लेके उन्होंने 56 रन बनाए ने 39 बॉल्स थे उन्होंने 9 चौके लगाए ने छक्का उन्होंने कोई नहीं लगाया ते यही एक वजह सी इन्हां दी और थल्ले आके समद जड़ा है उन्हें रन किए ने 48 उन्हें 34 बॉल खेडे ने और 3 चौके लगाए ने और 4 छक्के लगाए ने काफी अच्छे छक्के लगाए उन्होंने ते यह जड़ी दो बैट्समैन ने इन्होंने जड़ा ना अपनी टीम अज फाइनल जिता दिता और नाल नाल भी दस दें एक प्लेयर ऑफ द मैच जड़े फिर वो की कहते हैं अरुण हार्डी जड़े उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच मिले ठीक है उन्होंने बड़ी अच्छी हिटिंग की और अच्छे रन

0: सीजन च रेडिसन होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर कैलिगरी एयरपोर्ट ते खुशियां दी शुरुआत हो रही है। अपनी क्रिसमस पार्टी बुक करो अते पाओ हॉल रेंटल ते 50% छूट,
1: कॉम्प्लीमेंट्री फेस्टिव सेटअप,
0: रूम्स बुकिंग ते 15% छूट
1: अते हर गेस्ट ले एक ग्लास शैंपेन फ्री।
0: हर वीकेंड

0: इस हॉलिडे सीजन च रेडिसन होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर कैलिगरी एयरपोर्ट ते खुशियां दी शुरुआत हो रही है। अपनी क्रिसमस पार्टी बुक करो अते पाओ हॉल रेंटल ते 50% छूट,
1: कॉम्प्लीमेंट्री फेस्टिव सेटअप,
0: रूम्स बुकिंग ते 15% छूट,
1: अते हर गेस्ट ले एक ग्लास शैंपेन फ्री।
0: हर वीकेंड साडे बॉलीवुड नाइट इंडो चाइनीज बुफे दा मजा लवो सिर्फ $27.99 विच।
1: इस दे विच है बिरयानी अते लाइव डोसा स्टेशन। अपने परिवारिक छुट्टियां बनाओ होर खास, डबल क्वीन रूम ब्रेकफास्ट समेत सिर्फ $129 विच।
0: इस दे नाल बुफे ते 15% छूट, स्पा ट्रीटमेंट ते 10% छूट, सेलिब्रेट स्टे एंड डाइन ऑल अंडर वन फेस्टिव रूफ।
1: आज ही कॉल करो 403-475-1111 ते
0: अते रेडिसन कैलगरी एयरपोर्ट ते अपनी हॉलिडे मैजिक बुक करो। रेडिसन, जिथे खुशियां रोशनी बन के खिलदियां हन।
2: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba ate maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Dhillon ate Inderjot Kaur Dhillon ikko chhat heth immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde hain. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Dhillon, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
3: Regulated Canadian Immigration Consultant.
1: 403-400-0203
4: Calgary's oldest, biggest and only South Asian radio station, Sabarang Radio 94.7 FM.
5: Monday, Tuesday, Thursday, Friday 7 to 8 PM, Sundays 1 to 5 PM.
4: Visit sabarang.ca.
5: ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ ਟੂ ਆਲ ਜੀ।
6: The time is 5 p.m. You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.